ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आज गुरुवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: चैतराज फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना बादशाह फिल्म के इस गीत को। इस गीत की धुन बनाई समीर ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आपने सुना चुप चुप के फिल्म के इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

मरते हैं, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किस

0: की मुसीबत है।
1: प्यार हर तरह खूबसूरत है,
0: ओ प्यार से हम दूर ही अच्छे।

पुलक नारायण अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना दिल चाहता है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, दिल से फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
3: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
7: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
5: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
8: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
9: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
10: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
9: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
10: क्यों दे दो?
9: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
10: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
9: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
4: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
11: महाराज की जय हो।
12: महाराज की जय हो।
13: महाराज की जय हो।
4: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
14: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
15: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
14: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
10: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
14: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
10: जी महाराज,

0: लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा।
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
12: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर हूँ मैं, चंचल हूँ मैं, जल्दी सीख भी जाती।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सौर मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य।

0: क्यों पढ़ा?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
0: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
1: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
0: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
1: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
0: जी, मेरा नाम श्रुति है।
1: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
2: सूर्य ग्रह है या तारा?
1: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
0: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
1: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
3: अच्छा सर।
4: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
0: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
1: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
4: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
1: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
4: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आये कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
1: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
0: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
4: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
1: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
0: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
4: सर मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
4: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
0: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
4: सर एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
0: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
10: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इधर राजस्थान में अभियान की राज्य स्तरीय शुरुआत ब्यावर जिले के देवमाली गांव से हो रही है। पंचायत समिति में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा VBG रामजी का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को और आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। अलवर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। राजधानी जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। अलवर नगर निगम ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संयंत्र में रोजाना लगभग 1000 टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के 2 वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था CERN CERN की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान

0: पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं काम के लिए जा रही थीं और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल महिलाओं को भरतपुर के RBM जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून इस बार सामान्य से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बरसात की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले पूरे हफ्ते जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालटल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

पण यार कार्यक्रम सुना नाळा सगळे श्रोतो आहे सगळे सखियो ने रेडिओ सखी गुंजनदा घणा घणा राम राम सखियो श्रोताओं, ऋतु चल रही है, मौसम चल रहे है गर्मी रो, लेकिन बाट है बरसात है, इंतजार है सुहावने मौसम रो, फुहारा रो और खिलखिलाती हरियाली रो। सखियों ए मौसम क्या नदा नहीं आवे, ये ऋतु बारह महीना अपने किसान भाइयों ने भी बांट रहे के बढ़िया सुकाल आवे और घर में भरपूर धन धान होए। तो ये समय री बाट जो आप सारा ही जुए तो ये रे साथ ही सरकारों भी ये प्रयास रहे कि ये मौसम में कुछ पर्यावरण वास्ते बढ़िया किए जावे, अच्छो किए जावे और लोगों से एक उम्मीद लगाई जावे कि आम जनता भी ये में शामिल होए और पर्यावरण वास्ते कुछ बढ़िया कुछ स्वास्थ्यवर्धक और एड़ो किए जावे जिके से कि लंबे समय तक पर्यावरण में अनुकूलता बनी जावे। सखियों पर्यावरण सु केवल अपना बल्कि सारा जीव जंतु और ये धरती माथे विचरण करने वालों हर जीव जरूर है। पर्यावरण केवल अपने जीवन ना ही ना बल्कि अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जरूर है।

युद्ध के समय में बरसात भी पूरी उम्मीद रहा करे, और आस बन थोड़ी रह रही कि बरसात कई जगह तो हो ही भी चुकी है, लेकिन अपोज के एरिया में रह रहा हूँ उस तो सखियों थोड़ी सी बाढ़ जो है कि बरसात आए पूगी, तो कई बार अच्छो मौसम होते हुए भी अपन मिल जावे, लेकिन जो हना आप बाढ़ जो रहे इंतजार करे हम अफार हो तो अक्सर एड़ो होया करे कि आप तो बाढ़ जोनी पड़े, पर देश के लगभग पूरे हिस्से में ये समय तक बरसात हो जाएंगे। तो ये समय में जब भी कोई पौधो रोपी हो जावे तो वे रो बड़ो वनो फिर पनपन की संभावना जो है बहुत अधिक बढ़ जाया करे, और ये समय में आपों ने ज़्यादा देख रेख की भी जरूरत कौन पड़े जिसके कारण पौधों आप ही जड़ों पकड़ लिया करें। सच्चे आपों आप रे चारों तरफ देखो तो आपों ने ठा पड़े कि आपो किता विकास की तरफ अग्रसर हुआ हो, आप जिके गांव में रह रहे हो पुरानी गांव री जो सीमा आती वो ना देखो और आज की तारीख री सीमा देखो आपों ने समझ में आ जाए कि गाँव रो भी विस्तार हो गया। पहले जो गांव जितनी तक सीमित था आज वो सू कई गुना आगे बढ़ गया है, जंगलों की संख्या लगातार कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण की आड़ में अंधाधुंध उद्योग और विस्तार देख रहे हो, अंधाधुंध पेड़ और कटाई हो रही है, तो ये कारण पर्यावरण में जो संतुलन है बिगड़ते जाओगे। और अपन ध्यान है कि जब पर्यावरण में असंतुलन आवे तो मेरा परिणाम अपन कई रूप में देखने को मिले, निश्चित है अत्यधिक गर्मी पड़ना, अनियमित वर्षा होना, खेत तो अतिवृष्टि हो जावे और खेत पूरा काल पड़ जावे, खेत पूरे जल संकटित हो जावे और प्रदूषण फैले, प्राकृतिक तरह तरह की आपदाओं रो आगमन अपन अलग अलग रूपों में देखने को मिले, तो ऐ सारा परिणाम जो है पर्यावरण ने असंतुलन आए, और पर्यावरण ना संतुलित करने काम सिर्फ और सिर्फ वृक्ष किया करे, क्योंकि वृक्ष अपना सच्चा मित्र है। ये तो आपको पढ़िए जो शुरू सु हमें छोटी छोटी बातें कि आप ऑक्सीजन देवे तो बना ऑक्सीजन दे जो बात अलग है, लेकिन ऑक्सीजन देवने साथ में जो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड घुरो रही है जो कि गर्माहट न बढ़ावे कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करे, वातावरण न ठंडो रखने में पूरी पूरी मदद यो पेड़ों रीज रहा करे, मिट्टी रे कटाव न रोके, और साथ ही जितना ज्यादा वृक्ष लगोड़ावे उतनी ज्यादा वर्षा कराने में सहायक सिद्ध बना, जंगलों में या पेड़ों के नीचे असंख्य जीव जंतु आपरो आश्रय बनावे आपरो निवास करे, और ए जंगल कई था कहना कहना ले बैठाए और कितने औषधीय फलों पेड़ों रा बढ़िया फलों रा रूप है जो हमें की तरह तरह री औषधि अपन मिल सके, तरह तरह रा पेड़ मिल सके, आपो तुलसी लगावे, आपो नीम लगावे, आपो पीपल लगावे, ए पुराना अपनी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ो रा वृक्ष, क्योंकि यहाँ औषधीय गुण था और अपोरी इलाकों तो ऐडो है कि इथ बड़ा बड़े फलों वाला पेड़ को नहीं लगे, अपन जो छोटे छोटे फलों वाला पेड़ मिल जाए वो भी अपर वास्ते फायदेमंद है, जिता जिके रूप में भी पेड़ लगे वो पेड़ जिके वातावरण में पनप सके वो सब अपर वास्ते ये पृथ्वी वास्ते फायदेमंद है, तो पेड़ों के बिना तो पृथ्वी ने मथे जीवन की कल्पना भी को नहीं की जा सके, और आपको सोच भी कर सकूँ कि पेड़ों के बिना आप जीवन की हो सके, सीधी सीधी सी बात है कि जो वातावरण में ये पर्यावरण में ऑक्सीजन घुड़ोली है, ऑक्सीजन ही आप वास्ते जीवन दाता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहते जब पेड़ नहीं रहते तो ऑक्सीजन ही को नहीं हुआ, और जब ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्य जीवन की कल्पना करना ही एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाता है। तो बना अपर पुरुषों तो धार्मिक दृष्टि से कहो चाहे पर्यावरणीय औषधीय महत्व ना ध्यान में रखिए, ये पर्यावरण में अलग अलग तरह का पेड़ पौधा लगाया और उन्होंने पूरा सम्मान भी दिया, तो ए परंपरा जो शुरू से बनोड़ी

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अवरी अरे भरी रे हबोला था जरा पुरानी बावरी अरे भरी रे हबोला था हाथी घोड़ा ये पी गया मारे फन गज खा।

सखियों पूछो लोकगीत रेशमी रुमाल। सखियों आपको चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था पर्यावरण, और आपको समझियो कि पेड़ पौधा कितना जरूरी है जीवन को, कई तरीके से आधार है, पर बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। सखियों एक और ऐसी चीज है जो भी जीवन का आधार है और उसके बिना तो जीवन की बिल्कुल भी कल्पना को नहीं, एक दिन भी कल्पना को नहीं कर सका, और वो है जल। बिना कहो जावे कि जल है तो कल है, अरे केवल सिर्फ नारो बन के गुन रहे हो अपना, ये बात री गहराई समझनी चाहिए कि जल अगर काल चल के अपना नहीं मिले तो उसके बिना काल अपनों को कर सुरक्षित हो सके। तो जीवन में सबसे बड़ो सत्य यही है कि आपको पृथ्वी में थे मौजूद हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु और पूरी वनस्पति ये जल माथे निर्भर है। तुम्हारा अस्तित्व ये जल माथे है, और यदि आगे चल के जल नहीं मिलियो तो पृथ्वी माथे जो जीवन की कल्पना है ये खत्म हो जाए।

कल्पना के जो अपन सच जी रहे हो ये पृथ्वी के जीवन हो ए बस एक कल्पना बन के रह जाते, एक सपनो बन के रह जाते, क्योंकि जल अभाव में जीवन संभव ही गई और जल होते तो ये पृथ्वी माथे जीवन संभव होते, ये महत्व न समझाने वास्ते और जल संरक्षण ने प्रति लोगों ने जागरूक करने वास्ते जल महोत्सव मनाया जावे। जल जीवन महोत्सव यानी कि जल अपने वास्ते जीवनदायी है, और अगर ये ना नहीं समझिया तो ए भविष्य में अपोरी पूरी जिंदगी ना खत्म कर देते। तो ये कारण है जल महोत्सव, जल जीवन महोत्सव मनाया जावे। उद्देश्य साफ है कि लोगों ने जल उपयोग ना सोच समझकर उपयोग करने की सलाह दी जावे, समझाया जावे, वर्षा जल रो संचयन करना उन्होंने बताया जावे, उगे ना कौकर संरक्षित कियो जा सके, उरी एक भी बूंद ना जाया नहीं जावन दिया जावे, ताकि आप आने वाली पीढ़ी वास्ते काल वास्ते जल बचाए रख सको और उरो उपयोग आने वाली पीढ़ी भी भरपूर कर सके। अपने देश में सखियों अनेक क्षेत्र ऐड़ा है जित हर वर्ष जल संकट की स्थिति उत्पन्न जावे, चाहे वो अतिवृष्टि के रूप में हो, चाहे सूखे के रूप में हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जल की वजह से आयोड़ी आपदाओं में, तो जल की वजह से हर वर्ष जो संकट उत्पन्न हुए वे सू आप सब वाकिफ हों और सबनों अच्छी तरह से ध्यान है कि जल की वजह से कितनी हद तक जीवन संकट में जा सके, किस पीने पानी की कमी हुई, कि अचानक भूजल स्तर बिल्कुल नीचे हो जावे, कारण अपनों सब अच्छी तरह से ध्यान है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल रो अत्यधिक दोहन हो रही, वर्षा जल रो आपको बिल्कुल संरक्षण को नहीं कर पाता, और जो संरक्षित जल है वेरी भी बहुत अधिक बर्बादी कर रहा, बिना बात रो जल रो दुरुपयोग जो हो रही है सबसे ज्यादा आने वाले समय में अपने वास्ते दुखदायी बन सके। आपो आपरे आस पास आपो जेत रहे जेत आपो दिन भर विचरण करें या जेत कार्यक्षेत्र में जाए हर जगह मत है आपो ये निश्चित रूप से देखो है कि केत नल खुलो छोड़ दियो जावे, केत वाहन धोने वास्ते असीमित पानी रो उपयोग कियो जावे, असीमित पानी धो लियो जावे, खर्च कियो जावे, खेतों में पानी नो अनियंत्रित उपयोग वे किसी जगह वहां से कम पानी से भी कम हो सके, लेकिन फिर भी ओत बहुत ज्यादा पानी रो दुरुपयोग कियो जावे। कुछ पद्धतियां सिंचाई री अड़ी भी है जिकोनो अपनाए कि आप जल री भी बचत उस जगह भी कर सका, लेकिन लोग करना को नहीं चाहे, तो अपोरी खुदरी उपयोग अपोरे घरों रो उपयोग और खेतों में उपयोग मनुष्य जेत कार्यस्थल में जावे ओत उपयोग सब जगह आपो आवश्यकता सु अधिक जल रो खर्च करिया जल रो दोहन करिया। यदि आपो छोटी छोटी बातों में ध्यान में नहीं रखियो और खुदरी आदतों में सुधार में नहीं लाया तो लाखों लीटर पानी आपो व्यर्थ गंवा देसो, लेकिन अगर आपो थोड़ा सा सावचेत भी हो गया तो आपो लाखों लीटर पानी नो संरक्षित भी कर सकते। तो जल संरक्षण जो है ए भी जल महोत्सव मनावनो ए भी एक तरह की नागरिकों ने जिम्मेदारी सौंपनी है कि ओ ये प्रकृति का नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, ये प्रकृति ने बचावनो उमरो भी उतो ही फर्ज है जितो की सरकार हो। तो जो आप वन महोत्सव मनाओ उमें जपोनो जल महोत्सव भी ये समय में मनावना चाहिए और मनाए भी रहे हो चाहिए कि मनाए भी रहा हूँ, और उद्देश्य साफ है सरकार कि जल के प्रति आम व्यक्ति ने जागरूकता पैदा करनी और जल के वास्ते आम व्यक्ति के मन में भय पैदा करना कि आने वाले समय में अगर जल रो सही उपयोग नहीं कियो गयो तो ए जल अपने वास्ते कितो काल रो ग्रास बन सके, आपो सपनो ये काल रो ग्रास भी बना सके और येरी वजह से आने वाली कई पीढ़ियों भुगत सके। तो केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं समझते हुए अपन खुद ने जिम्मेदारी उठानी है, हर परिवार, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर।
अगर ये दिशा में आपका योगदान देता रहे तो आप जल संरक्षण में कई गुना आगे बढ़ जाता हूँ। आम व्यक्ति आम नागरिक अगर ये तरफ ध्यान देना शुरू कर दे तो आप पानी की बहुत हद तक बचत कर सकें और आप भविष्य में सुरक्षित रख सकें। तो ये वास्ते की करना चाहिए, तो सबसे पहली तो जरूरत है वर्षा जल संचयन की, जो आप हार्वेस्टिंग के माध्यम से कर सकें। हार्वेस्टिंग एक ऐडो सिस्टम हो जिसे कि छतों में से एकत्रित हो पानी खाड़ा से बह के सीधो नहीं हो जाए, उन्हें पाइप में उतारे जाए और प्रथम तया जो जल वे जो कचरे आड़ हुए उन्हें बाहर ढोल दिया जाए और बाद में जो तेजी से बहाव से पानी आवे वे ना हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूगर्भ में छोड़ दिया जाए ताकि भूगर्भ रो जल स्तर है जो वे में सुधार आवे और जितनी पानी भी उपयोग वे उतनी पानी रो उपयोग किए जावे। अनावश्यक रूप से पानी रो किए गए उपयोग दूसरों के वास्ते संकट का कारण बन जावे और साथ ही अपने खुद रे भविष्य के वास्ते भी संकट का कारण बने। अब वो कई बार देखो कि अपने घरों में नल बीजा कई बार टपकता रहे लेकिन आप लापरवाही से उन्हें टपकन दें छोड़ दो मैंने कि हो जाए अपने आप कदे को नहीं हुए और टपकते नल रो भी दुरुपयोग ए भी नल पानी के दुरुपयोग की श्रेणी में आया करे। तो अगर आप आसपास के नल टपक भी रहे तो तुरंत वो भी उपचार कराना चाहिए, वो लीकेज ना बंद कराना चाहिए या जिके तरीके से हो सके नल बदलने की भी जरूरत पड़े तो वो भी अपन कर देना चाहिए। और वनस्पति की बात आप करी जती और जल रो और वनस्पति रो दोनों रो बहुत गहरो ना तो। तो अगर आप पेड़ पौधा लगा सो तो उन्हें जल की आवश्यकता रहे, तो जल रो अगर आप सदुपयोग कर सकते हो तो आप वो पेड़ पौधों ने भी हरा भरा रख सकते हो क्योंकि वृक्ष जो को है वो वर्षा और भूजल संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। अगली बात है बहनों आपरे आसपास रे जलाशयों री तालाबों री नदियों री कुओं री सफाई आपरी जरूरत रे हिसाब से कुआ प्राकृतिक जल स्रोत और उपयोग तो ले रहा हूँ लेकिन ए कदे सोचो कोनी कि आपो जिके हद सू ये जल स्रोतों ने खराब कर रहा हूँ भविष्य में अपने वास्ते सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सके। तो अच्छे तरीके से सोच समझ कर ए कदम जरूर उठाना चाहिए कि आपकी वजह से जो प्राकृतिक जल स्रोत है पारंपरिक जल स्रोत है या जो पुराना जल स्रोत है उन्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुए उन्हारी उत्ती देख बया अजो भी होती रहे तो यह जलाशय हाल भी अपनो पानी पियन रहे और सिंचाई करने में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो बहनों बचपन से बच्चों में भी अगर आप पानी बचाओ की आदत घटो तो बच्चा भी ये मामले में सावचेत जागरूक हो जावे। आप आस पास जब भी उन्होंने खुलो नल दिखे तो तुरंत वह बंद करे क्योंकि उन्होंने जागरूकता उन्होंने भाव आपको पैदा कर दिए कि जल दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हर रूप से आप जल दुरुपयोग न रोक सकें और ये महोत्सव में आपकी भागीदारी घने रूपों में निभा सकें ताकि जल जीवन मिशन जो उद्देश्य है वो हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंच सके, उन्होंने पर्याप्त पानी मिले साथ ही उन्होंने उत्तम संरक्षण भी मिले ताकि वो आने वाले समय में जो भी

आज के समय में तो बहनों मांग ही रहा है कि अपन जल एक संसाधन के रूप में नहीं समझ के बल्कि एक अमूल्य धरोहर माननी चाहिए, क्योंकि ए अगर अमूल्य धरोहर ये धरती से विलुप्त हो गई तो ये धरती से जीव जंतु या मनुष्य की प्रजाति भी पूरी तरह से खत्म हो जाते, तो आने वाली पीढ़ियों सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे, ये वास्ते अपन कोई तरीके की लापरवाही नहीं करके भविष्य में जल संकट नो नहीं होवे ऐसा सब तरह का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल है तो आपको जीवन है, जल है तो आपको भविष्य है। अगर आप जल नहीं बचाए तो आप जीवन भी खोए देसा और ए प्रकृति अपन ये कृत्य भी कदे माफी को नहीं देवे। प्रकृति का सम्मान करना है, ये वास्ते जल और वन दोनों ने संरक्षण देना है ताकि वो बढ़ सके और आपरे भविष्य न सुधार सके। तो सखियो ती एक और जरूरी चर्चा ये बाद में बड़े लगाए से छोटे सो विराम सुनाई से एक मधुर सो गीत।

0: मेलबो मारा राधे ए तो हरी कई मिठी बोली कोयल कोयल जी बागोरी
1: सख्या मीठी कोयल री बोली सुनी आप और कोयल मीठी बोली जो ये ऋतु में बजनी चाहिए आवाज देनी चाहिए वो अज तक अपने कानों में आस बंदोड़ी है और उम्मीद करें कि जल्द ही जापो ना एड़ो मौसम ए वातावरण और ए खुशनुमा माहौल जल्द ही देखने मिलते हैं। सख्या मैं एक और एड़े विषय में बात कर सकूँ कि अपने स्वास्थ्य और अपनी परंपराओं की और अपने भविष्य तीनों से जरूरी यदि अभी आप जो दो विषय मैंने पहले चर्चा कर ली वो भी यहाँ सबसे जुड़ोड़ा था लेकिन अगला विषय भी ये रूप में देखे तो जा सके परंतु थोड़ो सो हट गया। विषय है मोटे अनाज रो सखियों जिकेनो के आज भी तारीख में आप श्री अन्न भी कमाए क्योंकि ए अपने वास्ते सबसे ज्यादा उत्तम और स्वास्थ्यवर्धक है। यह अड़ो अनाज है जो कम पानी में कम लागत में और कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से उगाया जा सके। पहले तो अपने भोजन में ये

बहुत महत्व तो, लेकिन समय के साथ गेहूं और चावल जो अपने खान पान में शामिल होया, ये रे बात तू ये अनाज रो थोड़ो सो महत्व आपो कम ऑक लियो और ए अनाज ये चक्कर में लारे रह गयो। हमें जब शारीरिक दुर्बलताओं और कमियां समय आने लगी तो समझ में आने लगियो कि मोटे अनाज रो की महत्व है और कई रूप में अपन ये ना शामिल करना चाहिए आपने आहार में, अपने भोजन में और नित्य प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। पोषण तो यह भरपूर है और स्वास्थ्य के वास्ते भी अत्यंत लाभकारी साबित हो चुका है। तो ये वजह से हमें अपनों तो समझ में था नहीं आसे या ना, लेकिन वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ये ना न्यूट्रिशन नालों और चिकित्सकों ने यह बात बहुत जल्द समझ में आ गई है कि अपनों जो खान पान है वो शुद्ध और सही गुण सही खान पान है जो अपन स्वास्थ्य बेहतर दे सके। लेकिन जब खान पान में कोताही की जावे तो वो सबसे पहले प्रभाव अपना आप स्वास्थ्य में से देखना मिले। तो बात करें आप मोटे अनाज भी जो कि स्वास्थ्य वास्ते सबसे ज़्यादा उत्तम और लाभकारी है, सबसे पहली बात तो ये अनाज कया कया हुए जिकन कि आप मोटे अनाज में शामिल कर सकें। तो सखियो आप तो दो तीन नाम सुनिया है, ज्वार है, बाजरो है, मक्का है। ये अलावा अपने एज तो एज धान उत्पन्न होया है और आपो एज खाया है, अपने पुरखों भी एज खाया है। आपो तो हमें हालांकि थोड़ो सो खान पान बदल दी हुई लेकिन पाछो ये तरफ अपन रुख करना चाहिए। तो ज्वार, बाजरा, मक्को ए अपना पुराना देसी खान पान रहे, लेकिन ये अलावा कुछ और ऐड़ा नॉम है जो अपर एज तो कौन ही रहे, लेकिन आजकल जो आवागमन का साधन सुलभ होया है और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी हुए मेरी वजह से अपना बीजी जगह भी होने वाले मोटो धान एक मिल सके। तो हमारा कुछ नाम है रागी, कोदो, कुटकी, सामा या मिलेट, चीना, बरी, सोरगम, आप तो शायद यह सब नाम भी कौन सुनिया, लेकिन ए भी मोटे अनाज के रूप में आप क्षेत्र में पाया जावे और यहाँ सारे अनाजों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जोड़े जावे, लेकिन यहाँ महत्व और यहाँ गुण दोनों ही समान है। ए शरीर वास्ते अपने स्वास्थ्य वास्ते बेहद उत्तम आहार मनिया जावे। तो सचे हमें जानता हूँ कि ये अनाज की फायदा अपन हो चुकी। सबसे पहली बात सखियों मोटो अनाज को वे पोषण से भरपूर हुए। मोटे अनाज में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन, मतलब एक संपूर्ण और संतुलित आहार जिकन कहो जावे वो सारा गुण ये एक अनाज में भरोड़ा बढ़िया है। और ये अपनों भरपूर मात्रा में अगर आप सेवन करो तो अपना भरपूर मात्रा में मिल जावे, ये शरीर में ताकत देवे और शरीर में आने वाली दुर्बलता और कुपोषण को दूर करने में मदद करे। दूसरा यह लाभ है कि यह सुपाच्य हो जाता है, यानी कि ये में फाइबर के वे रेशे ना जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में काम किया करे। तो ये में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होया करे जिसे सो आप पाचन तंत्र मजबूत हुए और पेट नहीं साफ होने वाली जो समस्या हुई वे सभी व्यक्ति ने निजात मिल जाए और पेट की गंदगी ना है बाहर निकालते रहे, यानी कि पेट में जो गंदगी या जो भी वसा या जो अनावश्यक तत्व शरीर में जमा हो जावे उन्होंने निकालने में यह फाइबर, यानी कि ये मोटे अनाज में पाया जाने वाला फाइबर बाहर निकालने में काम करे। तीसरी बात बनो आजकल आप देखो है कि मधुमेह जड़ी बीमारी हर घर में पाई जावे, हर घर में कम से कम एक या दो लोग मधुमेह जड़ी बीमारी से ग्रसित है। तो मोटो अनाज को है ये में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होया करे जो कि कम हो गई, ये कारण है जो खून में पाई जाने वाली शर्करा है वो ना तेजी से बदन को नहीं देवे और शुगर है मधुमेह मरीजों वास्ते बहुत लाभकारी मनिया जावे। ये कारण है
मधुमेह रोगियों नो गेहूं री रोटी छोड़ के पांच धान सु मिलोड़ी रोटी या पछे मोटे अनाज की रोटी खाने की सलाह दी जावे ताकि उमरी ब्लड शुगर जगह आप सामान्य बोल चाली भाषा में कहें रक्त शर्करा ओ बदन को नहीं देवे और बना रोकनो काम करे। ये साथ ही बना जिके में फाइबर और इतना सारा गुण वे आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस और दुनिया भरा विटामिन तो ऐ जदुए में मौजूद हो से तो वो शरीर के वजन न भी नियंत्रित रखे शरीर में चढ़न वाली अतिरिक्त चर्बी न चढ़न ही को नहीं देवे और अगर आ भी गई है चर्बी तो उन्हें बाहर निकालने काम करे। तो मोटा अनाज खाने से लंबे समय तक पेट भी भरोड़ो महसूस हुए ये तो बार बार अपनों भूख को नहीं लगे और जब बार बार भूख नहीं लगी बार बार आप पेट में कुछ को नहीं जावे तो सीधी बात है कि आप वजन भी नियंत्रित रहे। हृदय रे वास्ते यानी दिल रे वास्ते भी ये बहुत लाभदायक है। ये में मौजूद फाइबर और खनिज तत्व हृदय ना हमेशा स्वस्थ रखने को काम किया करे कोलेस्ट्रॉल ना नियंत्रित रखे क्योंकि आप बात करी के शरीर की गंदगी ना बाहर फेंके तो कोलेस्ट्रॉल भी शरीर नाड़ियों में जमा होने वाली गंदगी है जो कि धीरे धीरे नाड़ियों ने ब्लॉक करे और जब रक्त कोशिकाओं ब्लॉक हो जावे तो हृदय तक शुद्ध खून पहुंच को नहीं पावे और वही वजह से हृदय संबंधी बीमारियों होने चांस बढ़ जाया करे। तो ये कारण अगर मोटा अनाज रो सेवन किया जावे तो हृदय ने पूरी तरह फिट रखी क्योंकि शरीर में पहुंचने वाली गंदगी ने भी मोटा अनाज बाहर फेंक तो जावे और सुपाच्य होने कारण फाइबर से युक्त होने कारण विभिन्न तरह का आयरन कैल्शियम जो भी खनिज लवण है और जो भी मिनरल्स है वो अपन ये मोटे अनाज से मिलता रहे और यही वजह से हृदय आप सुरक्षित और पोषित रहा करे। रागी जैसे जो अनाज है बहनों ये में तो कैल्शियम री भरपूर मात्रा है और आज के युग में आप देखो तो विशेष रूप से महिलाओं में बहनों में आपों में क्योंकि आप रे स्वास्थ्य रो पूरा ध्यान को नहीं रख पाओ तो अगर आप मोटे अनाज रो सेवन करना शुरू कर दो तो आपको ना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत कम पड़े और आप शरीर की हड्डियों भी मजबूत हो से जब कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिल से तो बड़ी वजह से हड्डियों ना पोषण मिल से साथ ही दांतों से संबंधित जो रोगी रोग जो फैलोड़ा है वहाँ में भी निजात मिल से क्योंकि दांत और हड्डी दोनों ही कैल्शियम की कमी के कारण तकलीफ दे रहा करे तो जब अपनों भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलते तो हड्डी संबंधित रोग या बार बार हड्डी रो टूटना या दांतों रो भरना ऐसी समस्याओं भी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और सारा से उत्तम बात है बहनों कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता न बढ़ावे यानी कि मोटे अनाज रो जब भी आप सेवन कर सो लंबे समय तक तो अपना हष्ट पुष्ट तो रखते ही साथ ही आपो जो मौसमी बीमारियों या कोरोना जड़ी बीमारियों से ग्रसित होने जो खतरों मंडरावे आपो मत है वो भी कम हो जाते क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी ना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ना तेजी से बढ़ावे ताकि कोई भी वायरस जनित बीमारियों या जीवाणु जनित बीमारियों तुरंत आपो मत है असर को नहीं करें और ये पहले जुआ खत्म कर दे हमारे जीवाणुओं ना हमारे वायरस ना। और ये साथ साथ ही बनो आप जब शुरुआत में बात करी थी करो तो कि ए कम पानी में उगन वाला धान है तो ए पर्यावरण के वास्ते भी सबसे उपयोगी है क्योंकि जब पर्यावरण में पानी की कमी हुई तो ऐ जो अनाज है कम पानी में भी उग जाया करे और सूखे क्षेत्रों में तो विशेष रूप से अच्छी पैदावार दे और ये बारे में तो आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है कि बाजरी जो आप बुआई कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अधिक पानी की जरूरत कौन रहे अगर अधिक बरसात हो जाए तो आप बाजरी गड़ जाया करे तो कम पानी के क्षेत्र में भी बाजरी उग जाया करे और किसानों के वास्ते भी बहुत फायदेमंद सिद्ध हो जाए और स्वास्थ्य के वास्ते तो आपको देखिए उसकी आप वास्ते कितनी फायदेमंद है। कई मोटा अनाज अड़ा हुए जो में ग्लूटेन को नहीं है यानी कि गेहूँ जो आप खाएं उनमें ग्लूटेन है करे जो कि आसानी से पचा को नहीं और कई लोगों ने तो मेरी वजह से एलर्जी भी रहा करे और वो एलर्जी के कारण वो दिन भर व्यक्ति परेशान रहे तो मोटा अनाज कई ऐड़ा है जो मैं बिल्कुल मात्रा में ग्लूटेन को नहीं वे और ए एक
अच्छो और सुरक्षित विकल्प है गेहूं रो। तो गेहूं ना छोड़ के अगर

अनाज मोटो धान खाना शुरू कर देवे तो वे ना ये समस्या से भी निजात मिल जाते। तो अंत में वे ना एक बात है कि मोटो अनाज केवल स्वास्थ्य वास्ते ही नहीं मिलता, पर कृषि व्यवस्था वास्ते, अपने खाद्य सुरक्षा वास्ते, अपने पर्यावरण वास्ते हर रूप में फायदेमंद सिद्ध हुई है। स्थानीय किसानों ने तो सायर देवी पड़ी है, साथ ही अपनी मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखे और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी पूरी पूरी मदद करे, जल संरक्षण में योगदान देवे। तो इतना सारा जब वह फायदा है तो आप भी मेरी तरफ आकर्षित होना चाहिए, आपके घर परिवार में बच्चों ने भी येरी तरफ आकर्षित करके और वो ना यहाँ फायदा गिणन के वो ना येरी तरफ अपन ले जाना चाहिए ताकि मोटे अनाज रो उपयोग अधिक से अधिक बढ़े। ज्वारी रोटी खाओ, चाहे बाजरे की खिचड़ो खाओ, रागी रो दलियो खाओ, कुटकी रो पुलाव खाओ, कोई भी रूप में अपन आप आहार में शामिल कर सकें। तो मोटे अनाज आना सरकार भी बढ़ावा दे रही है, साथ ही आप भी जिम्मेदारी है कि आप भी है ना पूरे रूप से बढ़ावा दो और खुद भी स्वस्थ रहो, मजबूत बनाओ, ऊर्जावान बनाओ ताकि आने वाली पीढ़ी ने भी ए मजबूती दे सको। तो सखियों ऐसी आज की चर्चा, आज गई कार्यक्रम में लगाई विराम, अगली बार नई चर्चा जानकारी के साथ हाजिर हुई। रेडियो सखी गुंजन दो इजाजत, घना घना राम राम।

FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Mr. Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य

0: देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
5: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए।

0: श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: अमर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन है।

भर के एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया।

0: नजर उनसे दामन भी बचाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी।

भक्ति भरी भूमि सावन की खरी, इनके दिन झुमकी झड़ी जी अनन चाहे हाय। मस्ती भरी भूमि सावन की खरी, इनके दिन झुमकी झड़ी।

कोई मुस्काए हाय सपने सजे मन का हर तार बजे दिल के दर्पण में मेरे कोई मुस्काए हाय चुप चुप चुप झूम।

0: फिर चल रही हो जो मेरी राह में।
1: बेखुदी में हमको मौसम ने थाप मारा,
0: अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदा।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हजरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं। अरे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, यानी पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं।
1: और वो वक्त, उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं, और आनंद का जो
0: क्षण होता है
1: वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सुनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है, बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए या नहीं, इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं।

0: उनके घरों में, तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पे लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है
0: जी। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए,
0: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
2: सुर्खियों में घोला जाए खूनों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

फूलों तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो, बहता हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, फूलों तो बस शबनम है।

रंगम पिघले सोना अंग संयुक्त छलके बैठ बजे धुन सोई रात में हलके हलके रंग में पिघले सोना रंग से यूं रत छलके बैठ बजे धुन सोई रात में हलके हलके धूप में छाव में घूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है शोरियों में घर

0: लगे शहनाई,
1: याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, तूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई।
0: माना हो जाना हो जब कभी जमाना हो उस दिन कभी

0: तो दीपा बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और पगनीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को उस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती है। जी, और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जी सम्मानित कर दिया जी।
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था।

0: कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था। और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
1: बिल्कुल,
0: अपने लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
2: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई
2: जी,
0: ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
2: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
2: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।
3: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

बड़ा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के

0: तुमने कहना ना फिर से तो फरमाना।
1: नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना।
0: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

0: पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।
1: नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना।
0: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।
2: कुछ ऐसा ही होता है ना जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे
3: हमारा मजाक वैसा ही हो जाए,
2: वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
3: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
2: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही ना।
3: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
2: बिल्कुल। और सुनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
3: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना, और कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
3: जी,
2: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर बातें पता नहीं कहां तक चली जाती।
3: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
2: बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल सही कहा,
3: क्योंकि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे। यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
2: और एक संदेश और कहता है सोनाली, की एल्बम हमें एहसास

0: आते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पास में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि ये बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता वरना मैं आपको फोटो जरूर दिखाता।
0: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुरानी एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवां चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुरानी एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक, चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है, पूछता है दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपनी यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी,
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है। तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: इन पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: लड़कियां
0: ही काम करते थे।
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे के पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी, आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं, माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है, अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है, और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखी हुई है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी

0: बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: अत्यंत
0: जरूरी है।
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले सकती
1: ले
0: है,
1: सकती है,
0: अपनी
1: पा
0: इच्छा पूरी
1: सकती
0: कर
1: है, अपनी
0: सकती
1: इच्छा पूरी कर सकती है, ना सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा
0: है।
1: पूरी
0: हाँ,
1: कर
0: पूरी
1: लेती
0: कर
1: है।
0: सकती है,
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
0: पूरे परिवार
1: परिवार को
0: को।
1: होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले,
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमां भी झूम रहा है और ये सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा
1: अभी, कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।

0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो है,
0: है ना। और नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह की कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन कि नींद लाने वाला होता है, उसका ये उसकी जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली से की, यानी कि मेरी धन पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धन पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लें, चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले,
1: बिल्कुल
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: बिल्कुल, और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
2: की सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रीकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडे पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के दिन नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

बालों की खैर तेरे, गालों की खैर तेरे, बालों की खैर क्यों ना जुल्मी और जालिम ले जाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खासी, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके

नजर जो भी देखे ना कैसे निशाना हो तेरा, ये झुके झुके नैना ये लठ बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा, ये झुके झुके नैना।

0: की हो धूप गोरी फिर क्यों ना सारा जमाना हो तेरा ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुके नैना।
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
1: बोलिए महबूब खान साहब कैसे हैं?
2: आज आपकी दुआ है सर, बैंक पार्टनर से बोल रहे हो आप?
1: जी जी जी,
2: आपकी आवाज सुनता हूँ आपका, बहुत पुराना सुनता हूँ मैं तो, 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
2: आओ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश आलू फरमाइश
1: जी जी,
2: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
1: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं, पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
2: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने की शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
1: हाँ बिल्कुल,
2: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई भेदवाल, हमारे दोस्त होता है नीलित होता है ये।
1: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
2: आज ही आज ही है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
1: कौन सा गाना?
2: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
1: खानदान सुन करके। अच्छा जी
2: जी सर, नूतन सुनिधि फरमा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।
3: तू भी

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पादरीगढ़ जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसा हल रहा है कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब वो तो गाना ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य तो इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: बोल है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सजन आ
1: जाना। क्या जूते जितने बार सुनो ऐसा लगता आज बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए नए दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी, और इसके जो है संगीतकार खिलचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधु।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर, विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलोलाइट के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंचायत गीत
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सिलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए, मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मुझे बता कि मैं कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आपके भी प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन क्या है कि आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध भारती के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो टेम्पल आ गए हैं, छोटे छोटे आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों
1: को? साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और जो स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर देश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसे होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से जाते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेके आते हैं हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है घुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम में आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।
2: आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जा

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारिका राजपूत बात कर रही हूँ बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, तत्काल सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की पूजा गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूँ शिकायत हर सांस को तेरी चाहत से।
0: ओहो हो हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन, आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरदीप बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने सुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और उसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देकर चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गाँव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गाँव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर, मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है।
0: जी,
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यही अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा सपना था सर कि मैं कभी दूध भाती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया।
1: मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फ्लिप का रेडियो हुआ करता था, छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं देश भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला,
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के श्रम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है। वो गाना है पत्थर के श्रम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। जी
0: फहीम भाई बोलिए।
1: सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी।
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाए और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS से अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी। बाकी पूरे देश में
1: जी
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है। वहां श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ

0: जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: गर्मियों के 40 दिन वहराट और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो हम पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बहरात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
1: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार
0: बहरात के समय? जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को जब छुट्टियाँ मिलती है तब हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बहरात के समय हमें जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बहरात के समय फैमिली के साथ।
1: आपकी नजर से वो गर्मियां हैं मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पत्थरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना और दूसरा जो है हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से
1: शाम
0: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी,
0: तो मुझे एक वीर दारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने अभिभूत भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नजारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए। और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर दारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02226702888 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सहीन नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

सुनने वालों को आशा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विश्व खेल पत्रिका दिवस, आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, जो हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह विशेष दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों, लेखकों और प्रसारकों के उस समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मानित करता है, जो खेल की घटनाओं और एथलीटों की कहानियों को प्रशंसकों तक पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें इस दिन की जो है स्थापना के बारे में, तो 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान AIPF जो है एप का एक गठन किया गया था, इसलिए इस तारीख को इस उत्सव के रूप में जो है चुना गया।

विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो है, यह दिन जो है खेल जगत की जीत हार, संघर्ष और मानवीय भावनाओं को अपनी लेखनी व प्रसारण के माध्यम से जीवित करने वाले और जो है अपना अनुभव जो है उनको जीवंत करने वाले पेशेवरों को श्रद्धांजलि देता है। साथियों, इसके बारे में जो यदि जागरूकता की हम चर्चा करें तो खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और पत्रकारों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है वह हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान की सराहना करने के लिए समर्पित है। साथियों, इस दिन विशेष जो है कुछ चीज़ें मनाई जाती है और जो हम यदि चर्चा करें तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है कि 2 जुलाई 1924 को ही पेरिस में AIPS की स्थापना हुई जो खेल पत्रकारों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। साथियों, इसका जो उद्देश्य देखें या फिर इसका जो सम्मान देखें तो खेल की दुनिया में रोमांच और ताज़ा खबरों को प्रशंसकों तक पहुंचाने पत्रकारों के समर्पण को सलाम करना। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता को बढ़ाता है और पत्रकारों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। खेल जगत में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता को जो है यह प्रोत्साहित करता है। साथियों, खेल पत्रकारिता एक गतिशील पेशा है जो खेल और कहानी कहने की कला को एक साथ जोड़ता है। खेल ब्रिटेन की संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है और हम देखें तो ये जो है काफ़ी जगह का जो है श्रमित इतिहास भी है। खेल पत्रकारिता में डिग्री हासिल करके इस क्षेत्र में और भी हम अधिक इसको जान सकते हैं और अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं। आधुनिक पत्रकारिता की जो हम देखें तो यह काफ़ी आजकल चलन में भी है। इसमें क्या होता है कि खेल पत्रकारिता में यह एक ऐसा पेशा है जो खेल और कहानी को कहने की एक साथ जो है कला है वो बताता है। हम देखते हैं काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो किस तरीके से ऐसे जो है प्लेयर है, ऐसे खिलाड़ी है, उन्होंने किस तरीके से अपने खेल की शुरुआत की, क्या क्या उनके सामने जो है समस्याएं आई, किस प्रकार से उन्होंने समस्याओं का समाधान किया और खेल में इतना अच्छा नाम कमाया, इतना जो है वह मुख्य रूप से उन्होंने कड़ी मेहनत की और उस क्षेत्र में आगे बढ़े, इस चीज़ को किस प्रकार से कहानी के रूप में बताया और बताते हैं कि उस क्षेत्र में पारदर्शिता कैसी है, निष्पक्षता कैसी है, सत्यनिष्ठता कैसी है और उनकी जो कड़ी मेहनत है वो किस तरीके से उस खेल के क्षेत्र में रंग लाई। हम यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा ही खेल पत्रकारिता जो है यह बताता है कि आज के जो युवा है, आजकल के जो युवा है उनको एक प्रेरणा भी देता है। इनको पढ़कर, इनका ध्यान देकर, इनको सुनकर हम यह कह सकते हैं कि किस प्रकार से खेल में आगे बढ़ना यह हमें बताता है। युवाओं को कहते हैं कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, उनकी प्रेरणा से हम देख सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी खिलाड़ी आगे बढ़ता है। साथियों, ये जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है यह विशेष दुनिया भर के खेल पत्रकारों, लेखकों और प्रसारकों के उच्च समर्पण और कठिन मेहनत को सम्मानित करता है जो खेल की घटनाओं और एथलीटों की कहानियों को प्रशंसकों तक पहुंचाते हैं। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म हम साथ साथ हैं से। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि अपनी रुचि को अपना हुनर कैसे बनाएं। साथियों, काफी बार हमने आज के समय में यह देखा है कि आज के युवा है या लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो पेशा वो कर रहे हैं, कभी कभी शायद वो उनमें रुचि नहीं रखते, लेकिन शायद कुछ परिस्थितियों की वजह से उन्हें वह काम करना पड़ता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको शौक है, उसमें जो है अपना हुनर बनाए रखना चाहिए। अपनी रुचि को हुनर, कौशल और फिर करियर में बदलना एक बेहतरीन निर्णय है। जब शौक जुनून बन जाता है तो काम काम नहीं लगता। इसे हासिल करने के लिए अपनी पसंद को पहचानें। साथियों, यह भी ध्यान रखें कि यदि आप काम दूसरा कर रहे हैं लेकिन आपकी जो है पसंद कुछ और है, तो हम उस पसंद को कायम रखें। ये ध्यान रखें, जैसे हम कोई पेशे से यदि अध्यापक है लेकिन हमें चित्रकारिता का भी शौक है, तो हम उसको भी बनाए रखें। यदि हमें सिंगिंग का शौक है, यदि हमें डांसिंग का शौक है, तो वह भी चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। क्योंकि अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा को पहचानना, अपने अंदर उस चीज़ और उस जुनून को बनाए रखना जिसका आपको शौक है। साथियों, जो चीज़ में हमारी रुचि होती है, उस काम को करने पर पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। उसको करने में हमें कभी भी बोझ नहीं लगता। इसीलिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानें और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें। पहचानें कि आपको क्या पसंद है। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता। सीखने की इच्छा जगाएं। कोई भी हुनर जन्मजात नहीं होता, उसे प्रशिक्षण और अभ्यास से तराशा जाता है। इसीलिए यह ध्यान रखें कि जिस काम में आपकी रुचि है, उस काम को हमेशा ही मन से करें और लगातार निरंतर करें, जिससे क्या होगा, आप उस चीज़ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। फिर लगातार करने से जो है आपका जो है उसके अंदर शौक तो था ही, एक हुनर अलग ही हो जाएगा। और हमेशा ही अपने कौशल का विकास करें। ये ध्यान रखें कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है, उसमें जो है और भी आगे उसको देखते रहें। और आजकल तो सोशल मीडिया है, हमारे पास इंटरनेट है, उससे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज लेते रहें। और आपकी जो भी ट्यूटर वगैरह है, उससे देख देख कर आप और भी नई चीज़ें उस क्षेत्र में सीख सकते हैं। लेकिन साथियों, ये ध्यान रखें कि खाली शौक होने से कि मुझे इस चीज़ का शौक है, उससे पर्याप्त नहीं होता है। जिस चीज़ का हमें शौक है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आजकल तो जो है काफ़ी युवा कुकिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिए, हर चीज़ में, गार्डनिंग में, पेंटिंग में, योगा में, ये सब जो चीज़ें हैं वह आदमी को आगे बढ़ा रही है, एक अलग रुचि दे रही है। और जो है सब अपने शौक के लिए अपनी जॉब के साथ साथ में यह काम कर रहे हैं। साथियों, हम ये भी कह सकते हैं आज के जो युवाओं को कि यदि वो जिस चीज़ में शौक रखते हैं, उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में माहिर होने के लिए

निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, इसीलिए लगातार अभ्यास करें और अपने कौशल को हुनर के रूप में बाहर लाएं। साथियों, आजकल जो सोशल मीडिया है वह बहुत ही अच्छा एक स्कोप है, जिससे हम हमारी जो है कला को और भी आगे प्रसारित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चाहे वीडियो बनाकर या फिर जो है अपना खुद का पेज बनाकर हम कुकिंग, फोटोग्राफी, डांस या फिर जो है पेंटिंग, गार्डनिंग, इन सभी चीज़ों को सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, जिससे लोगों तक जो है हमारी वह कला का प्रसारण होगा, लोग हमें जानेंगे और जो है हमसे कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं यदि हमें ज़रूरत है तो हम भी सोशल मीडिया की मदद से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबकी रुचि अलग अलग होती है, रुचि हर व्यक्ति की जो है अलग पहचान होती है। यह केवल एक शौक नहीं है बल्कि आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी है। साथियों, यह जरूरी है कि जो चीज आपका शौक है वो वास्तव में आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है, वह आपकी आदतों से, आपके व्यक्तित्व से मैच भी करना चाहिए, क्योंकि जो है जैसे जैसे हमारा दिमाग उसकी ओर चलता है तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। रचनात्मकता में जो है, यदि हम रचनात्मकता की बात करें तो चित्रकारी, फोटोग्राफी, बागवानी, क्राफ्टिंग, और यदि बौद्धिक की बात करें तो किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, और फिर जो है नई नई भाषाएं सीखना, ब्लॉगिंग करना, और भी हम कहते हैं तुकबंदी से अलग अलग कविताओं की रचनाएं करना, यह भी एक अलग ही शौक होता है। और शारीरिक की यदि हम बात करें तो योग, नृत्य, कोई भी खेल, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, अन्य कोई भी जो है प्रकार का गेम है, उसके अंदर भी काफ़ी लोगों की अलग अलग रुचि होती है। साथियों, हमने ये भी देखा है किसी किसी की जो है वह शौक अलग होते हैं, जैसे संग्रहण का शौक, ठीक है, पुराने सिक्कों का संग्रहण करना, डाक टिकट का करना, ऐसे भी लोग हैं जो पुराने सॉन्ग्स और है उनको पूरे पूरे लिखते हैं, उनकी जो है कलाकार कौन उनको गाने वाले हैं, कौन सिंगर्स है, कौन प्रोड्यूसर्स है, इनके बारे में भी लिखते हैं, उनके बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं, यह भी जो है काफ़ी लोगों का शौक होता है। लेकिन साथियों, ये ध्यान रखें, जिस चीज़ में आपकी रुचि है उनकी जो है वर्कशॉप को जो है अटेंड करें, आपकी जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको भी लें, और आजकल हर क्षेत्र में हर चीज़ को जो है अलग अलग प्रकार से बताया जा रहा है, हर एक नई चीज़ का जो है विकास हो रहा है, तो उन जो नई चीज़ों को सीखें ताकि हम जमाने के साथ में आगे बढ़ सकें, लोगों से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। साथियों, इसीलिए अपनी रुचि और अपने शौक को एक हुनर और कौशल के रूप में बढ़ा, और फिर यदि हमें उसे करियर में बदलना है तो वह एक बेहतरीन आपका निर्णय हो सकता है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करने वाले हैं वर्षा जल संरक्षण। साथियों, वर्षा जल संरक्षण रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है। और जल संरक्षण का अर्थ है बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना और उसका संग्रहण करना। आज हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर पूरा ऐसा हो गया है कि घटते

भूजल स्तर, जल संकट की विकट स्थिति और पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए आज जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। वर्षा जल संरक्षण की जो है आवश्यकता आज पूरे पर्यावरण को है, क्योंकि इसके कई कारण हैं, जैसे भूजल स्तर को बढ़ाना, बारिश के पानी को भूमिगत जल में पुनर्भरण करने से जो है वह सूखते हुए कुओं और बोरवेल का जल स्तर ऊपर उठता है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण भविष्य में स्वच्छ जल की किल्लत से निपटने के लिए यह पानी एक स्वतंत्र और सुरक्षित स्रोत है। साथियों, वर्षा जल संरक्षण से जो है मिट्टी का कटाव और जो यह इसको थोड़ा आराम मिलता है इसे रोकता है। वर्षा जल को सही तरीके से इकट्ठा करने से शहरी क्षेत्रों में जो जल भराव बाढ़ की समस्या जो है वह कम होती है, और बारिश के पानी का जो ये तेज बहाव है उसके होने से मिट्टी की जो कटाई है वह रुकती है। अब हम देखें तो आर्थिक बचत में भी इसका काफ़ी योगदान है। घरेलू और जो कृषि कार्य है जैसे बागवानी, कपड़े धोना या फिर जो है दूसरे भी कामों में जो है पानी का जहाँ उपयोग होता है उसके लिए एकत्रित वर्षा जल का उपयोग करने से पानी के जो बिल है उसमें कमी आती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। दूसरी बात यह भी है कि किस तरीके से वर्षा का जल जो है एकत्रित किया जाए यह सीख बच्चों को भी मिलती है, क्योंकि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, प्रत्येक नागरिक की एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसे छत के पानी को पाइप के जरिए भूमिगत टैंक या फिर जो है रिचार्ज पिट में डालकर आसानी से अपनाया जा सकता है। पानी बचाने के लिए विभिन्न उपाय विधियों और जो है अलग अलग तरीकों को हम अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। देखते हैं कि इसके अलावा रेनी फिल्टर्स पर जल संरक्षण की अत्यावश्यक आवश्यकता से काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिलती है। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के प्राचीन तरीकों जैसे जोहड़ वगैरह जो है इससे काफ़ी लोगों को सहायता मिलती है पानी प्राप्त करने में। साथियों, वर्षा जल संग्रहण से तो सिंचाई में भी सुधार होता है, जो भूजल स्तर घटने का एक जो है प्रमुख कारण है। छतों को जल शोधन को ध्यान में रखकर जो है डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इनमें जल संचयन प्रणाली जो है जोड़ना एक सरल प्रक्रिया है। साथियों, वर्षा जल में हानिकारक रसायन लगभग न के बराबर होते हैं, जो इसे सिंचाई के लिए आदर्श बनाता है। इससे जो फसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होती है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। खेतों के लिए यह जो पानी है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। वर्षा जल संरक्षण का उद्देश्य बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना है, उसे घरेलू उपयोग या फिर भूजल स्तर को सुधारने के लिए सहेजना है। और यहाँ पर चाहे हम छत में कह सकते हैं, चाहे जिसके घर पर खेत हैं वहाँ कह सकते हैं, इनके अलग अलग पानी इकट्ठा करने के लिए स्रोत होने चाहिए जहाँ पर वर्षा के जल को उपयोग किया जा सके। यदि खेत में यह पानी जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वह बहुत ही घरों के लिए सही माना जाता है। घरों और इमारतों की छतों पर एकत्रित बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से साफ फिल्टर करके भूमिगत टैंकों या फिर जो है रिचार्ज पिट में भेजा जा सकता है। फिर उसी पानी को हम अपने घरेलू कामों में यूज कर सकते हैं। खेत का पानी खेत में और जो है दूसरा पानी हम अलग क्षेत्र में दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब या डोबा खोदकर बारिश के पानी को खेतों में ही रोका जा सकता है। यह तकनीक सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। साथियों, खुले स्थानों या बगीचों में रेत है, ईंटों से भरे सोख्ता जो गड्ढे बनाए जाते हैं जो सतही पानी को तेजी से जमीन के अंदर सोखने में मदद करते हैं और भूजल का
जो इस तरह

ताकि आगे हमें कभी भी जल की जरूरत पड़े तो हम उस भू जल जो है उसका यूज कर सकते हैं और आगे वह हमारे काम आ सकता है। साथियों, हम ये कह सकते हैं कि जल संरक्षण यह एक सरकारी प्रयास ही नहीं है बल्कि हमारे खुद के भी प्रयास होने चाहिए। इसके अलावा पानी का महत्व हम यदि समझेंगे तो हमारे आगे वाले जो पीढ़ी है वह भी इस पानी के महत्व को जानेगी, जल का संरक्षण कैसे करना है उसको पहचानेगी और किस प्रकार से आगे आने वाले भविष्य में ये जो जल है वह हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ ये ऐसे ही जो गिरता रहता है बहता रहता है वह नहीं होना चाहिए, ये बच्चे जान पाएंगे। इसीलिए जल संरक्षण आवश्यक है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म गदर से। अब हम चर्चा करने वाले हैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में। एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और मातृशक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल। इसके तहत आप अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाते हैं और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। साथियों, इसकी जो शुरुआत है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके जलवायु परिवर्तन से लड़ना और हरियाली को बढ़ाना था। यदि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, यदि इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप अपने घर आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाते समय जो है उसका फोटो या जो है वीडियो आप सोशल मीडिया पर एक पेड़ माँ के नाम हैशटैग के साथ में साझा भी कर सकते हैं। साथियों, इस अभियान और वृक्षारोपण की गतिविधियों से जुड़ने के लिए और अपडेट रहने के लिए जो है एक माई भारत पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग लोगों ने इसके साथ जुड़े हैं और किस प्रकार से गतिविधियों में वह इसका हिस्सा बने हैं। यह पहल हमें माँ के प्रति प्रेम और धरती माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी दोनों को एक साथ निभाने का अवसर देती है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत जो है वह 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और अपनी माँ के प्रति सम्मान व श्रद्धा को प्रकट करना है। इसके तहत लोगों से अपनी माँ के नाम पर या उनकी स्मृति में कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की जाती है। उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो जो है पर्यावरण संरक्षण में इसको बढ़ावा मिलता है और

अपनी माँ के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वह भी प्रकट होती है। और आज के समय में पेड़ जो है वह प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम यह कह सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य के भी लिए। यदि हर एक जो है, प्रत्येक नागरिक यदि इसका हिस्सा बन जाए, यदि वह इस सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े, तो हमारे देश को हरा भरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब प्रकृति हमारे साथ है तो जो हर चीज़, सभी चीज़ें जो है अच्छी होती है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जो है वृक्षारोपण अभियान का एक दूसरा चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी माँ और धरती माता के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पेड़ लगाने, पर्यावरण का संरक्षण करने तथा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रेरित करना है। इस यदि अभियान की बात करें तो इसकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो प्रकृति के प्रति जो हमारी भागीदारी है वह हमें बताता है, उसके प्रति हमें सचेत करता है। और यह केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि माँ के प्रति प्रेम और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक हरा भरा भविष्य सुरक्षित करने की एक भावनात्मक संकेत भी है और संकल्प भी है। इसके तहत विभिन्न राज्य जो है उनके यहाँ पर जो है व्यापक स्तर पर बड़े वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। साथियों, हम देखें तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह मानसून के महीनों तक और सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर यदि पौधे लगा लिए जाएं तो हमें जो है बहुत ही अच्छी उसके वापस आउटपुट मिलता है। मानसून तक जो है इन पौधों को बहुत अच्छा पानी भी मिल जाता है, और मानसून का पानी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इस अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों को प्रकृति के करीब लाने, उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह समझ सकें कि यह पौधे, पेड़, पर्यावरण के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वह कितनी जरूरी है। यह पहल भूमि के क्षरण को रोकने, जैव विविधता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। इसीलिए हो सके उतना जो है हर नागरिक को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, और एक पेड़ माँ के नाम इसका जो हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित जो है महसूस करवाना चाहिए, और पर्यावरण और प्रकृति में हमारे ये जो सहयोग है उसके लिए हमें खुद पर गर्व भी होना चाहिए। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गाना।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगर वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिचन गीत।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस कांड। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: नाचे सारा अंग अंग छाया चहु और रंग कृष्ण भूले सारे ढंग करे गोपियों को तंग
1: नाचे सारा अंग अंग छाया चहु और रंग कृष्ण भूले सारे ढंग करे गोपियों को तंग
0: भाग हुआ मत वाला भाग हुआ मत वाला झूमे गोकुल का वाला भागे धीरज की बाला देखो छेड़े नंद लाला
1: भजो गोविंद हरे
0: भजो गोविंद हरे
1: भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे भजो गोविंद

0: बड़े ढीठ है कन्हाई, बड़े ढीठ है कन्हाई, ऐसी बांसुरी बजाई, सुध बुध बिसराई, राधा दौड़ी दौड़ी आई।
1: भज गोविंद हरे, भज गोविंद हरे,
0: भज गोविंद हरे, भज गोविंद हरे।

0: सदगुर श्याम श्याम देखो जमुना भी श्याम, गोप गोपी हुए श्याम भया बीरज भी श्याम।
1: सदगुर श्याम श्याम देखो।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का आज से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले ही साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगले 5

0: अस्पतालों में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गांवों में रोजगार बढ़ने के साथ ही वहां की तस्वीर बदलेगी।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से राष्ट्रीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए ये योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
2: इस योजना में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है जिससे हम विकास उन्मुखी कर सके और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सके।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 2 लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने एआई का बुद्धिमता से उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री सिंह जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप सरकार नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन में बाधक बन रहे करीब 2000 नियमों को समाप्त किया है जिसमें दस्तावेजों के अनिवार्य सत्यापन सहित कई अन्य फैसले शामिल हैं। समारोह में श्री सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल 7 श्रेणियों में कुल 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में सभी राज्यों की भागीदारी रही, सभी ने अपने अनुभव साझा किए।
3: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह के तहत आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए, सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 7 दिन की देरी से आया मानसून वर्तमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
4: आज मानसून के समय से 1 सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ ऐसे पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में जैसे भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ जैसे तेज लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि मानसून के दौरान एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और आमजन की सक्रिय भागीदारी ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
5: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढके। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री यादव आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। ये सम्मेलन देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी लाने और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। RAS भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 1 और 2 मई को आयोजित होगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 6 दिसंबर को होनी थी। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा, विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापाराम ने तैयार किया है। फलौदी जिले में इन दिनों जल संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जन सहयोग से रेत में दबे गुलाब सागर, पणिहारी और सेलड़ी तालाबों के एकीकरण का काम किया जा रहा है। इससे इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर एक बड़े जलाशय का स्वरूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बीते दिनों कामों का निरीक्षण किया और इससे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में पेयजल और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आवश्यक निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित आवेदनों के निस्तारण और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। अधिकारियों को जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। फलौदी विधायक पब्बा राम विश्नोई और जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64 हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में एक

0: 153,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। फरौदी शहर में भामाशाहों के सहयोग से नए यातायात पुलिस थाने का निर्माण किया गया है। इसका बीते दिनों उद्घाटन हुआ। पुलिस विभाग ने इस पहल को जन सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी राम जी माथे आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो भयो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एआई ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासा री बिरखा शुरू हुई। आवता 24 घंटा में कई ठोड़ा भारी बारिश रा आसार। प्रदेश में ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी रातेल आज आखा देश में काम शुरू है क्यों। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश रा मुक्कावरी पल्ली गाँव इनरी शुरुआत कीनी। ये मौके श्री चौहान कहो कहीं रतेत पहली साल में 1,51,000 करोड़ रुपया रो प्रावधान करी चियो है, जबकि आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। चिणो गाँव में नौकरी धंधा रा मौका बधवा सागे वठरी तस्वीर बदलेला।
2: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
1: केंद्रीय मंत्री ऐलान की नोक देश राज्य में मजूरी 300 रुपया रोजिनाओं कम नहीं फैला। वे बतायो कि वीबीजी रामजी ने असरदार तरीकाओं लागू करण सारू प्रशासनिक खर्च 6.9% करती उचियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्यावर जिला री मसूदा कृषि उपज मंडियों वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए इन कार्यक्रम में जुड़िया। इन दौरान वे वीबीजी रामजी रा राज्य स्तर रा कार्यक्रम में कहो कि गाँव री बरकत और विकास सारू वीबीजी रामजी लाइचियो है। श्री शर्मा कहो कहीं रजरिए पानी बचावन गांवाई हलका माय बुनियादी ढांचा विकास आजीविका और आपदारों सामो करण जुड़िया काम कराया जावेला।
3: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सके और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सके।
1: मुख्यमंत्री ई मौके करीब 424 करोड़ रुपया रा विकास रा काम री शुरुआत कीनी। वह देवमाली माए 2 करोड़ रुपया रा खर्च जात्रुआ सारू आराम घर बनावन रो ऐलान कीनो। कार्यक्रम माए श्री शर्मा वीबीजी रामजी रा तेत 2 जना ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड ही दीना। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुशासन री जरूरत बनक्यो है। वह आज जयपुर में राखी जया 2 दिन रा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा समापन समारोह में बोल रहा है। जितेंद्र सिंह एआई ने बुद्धिमानियों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दीनो। ई मौके केंद्रीय मंत्री कहो कि विकसित भारत 2047 रो सपनो सांचो करण सारू प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। वह कहो कि मिनिमम

0: गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस रा मंत्र रा हिसाब हो सरकार जनता माथे खास ध्यान देवन वाला साफ कोई सागे और जवाबदेह प्रशासन ने बढ़ावो दे रही है। डॉक्टर सिंह कहो कि केंद्र सरकार सुशासन माए अड़चन पैदा कर रहा करीब 2000 नियम खत्म करती ना है जहाँ माए कागजात रा जरूरी सत्यापन समेत कई फैसला शामिल है। जलसा माए श्री सिंह 7 श्रेणिया माए 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तीना आमाए 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार ही शामिल है। डिजिटल तरीका जमीनी लेवल माथे सेवा पोगावन ने और बेहतर बनावन सारू दिया जाए इनाम माए ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो कि AI मौजूदा दौर माए जिंदगी री जरूरत बन गयो है।
1: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह राते आज जयपुर माए राज्य स्तर रो मान जलसो राखी चियो। जलसा माए गावाई हल्का माए नवाचार तकनीकी दक्षता और बेहतरी सारू काम करण बाबत सहकारी संस्थाओं रा अहलकारा और कर्मचारियों रो मान करी चियो। जलसा माए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक कहो के सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सबके लिए एक सब एक के लिए रा सिद्धांत माथे आधारित जनता रा भलारी मजबूत सोच है। वह कहो के एका भरोसा और भड़ी कोशिशाओं हर चुनौती रो सामो करता था का समावेशी और लगातार विकास रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य रा उगनी हल्का माए चौमासा री बिरखा शुरू है की है। मौसम विभाग रे मुजब 7 दिन मोड़ा पाछे टोंक जयपुर और अलवर माए चौमासा री बिरखा वेवण लगी है। भरतपुर जिला रा बयाना माए जोरदार मे बरसियो। प्रतापगढ़ माए 4 इंच उमबत्ती बिरखा रा समाचार है। चित्तौड़गढ़ माए तेज बरसात हुई। दौसा माए भी तेज बरसात हो कई हल्का माए पानी फरक्यो। अलवर शहर और आरएसआरआर रा हल्का माए चोखो में बरसियो। राजधानी जयपुर माए बादला मंडिया रहा। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 2-3 दिन माए प्रदेश रा कुछ और हल्का माए चौमासा री बिरखा सरूफे बन रा आसार है। वे बतायो कि आज उदयपुर कोटा अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे बादना री गाज सागे बिरखा वेवन री संभावना है जबकि कोटा संभाग रा जिला माए कठे कठे घनी जोरदार बिरखा वेवन रा आसार है।
2: आज मानसून के समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ ऐसे पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल भावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य माए ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो चावेला। इन दौरान डेंगू री रोकथाम मच्छरा माथा काबू करण और जनता माए जाग जगावन सारू चिकित्सा विभाग री ओर जांच करें सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे खास अभियान चलायो चावेला। जयपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के चौमासा माए मच्छर पैदा भेवन री संभावना बढ़ जावे है। डेंगू रो असरदार टीको या खास इलाज नी वेवणु मच्छर पैदा वेवण रे ठोड़ा खत्म करण हर जनता री भागीदारी बचाव रो सबो असरदार तरीको है। चिकित्सा विभाग जनताओं अभियान माई मदद करण और घर

0: है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ।
2: देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले।
1: जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान भाई सुनवाई सकल किसान भाई ने पूजा बहन
1: और लालजी भाई रहा घना घना राम राम
0: राम राम। लालजी भाई, लालजी भाई देखो गर्मी तो आपके प्रचंड रूप में पड़ रही है और हमें आप और पूरा देखो जनमानस है, ऐसा लोग है, प्रदेश का लोग है, पूरा किसान भाई है, सब बात बैठा है बरखा रही कद्दू बरसात हो गए और जमानो आवे उन्नत वर्ष है तो आप और आगे भी जो दिनचर्या है वो चालू हो गए। अरे किसान भाई और जो कौम है वो बरसात में थे निर्भर रही, हालांकि हमें तो कई प्रकार की व्यवस्थाओं हो गई है हमारे वास्ते भी कि जो कि पहले जो खाली बरसात में थे निर्भर रहता था उस चीज़ को नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति जो चीज़ है वो तो प्रकृति जुड़ा है तो बरसात शुरू होते तो आप और किसान भाई और कार्यक्रम भी चालू होते तो हमारे तक समय में आपका किसान भाई है जो खेत रही तैयारी तो कर चुकी है उसे, निराई गुडाई कर ली उसे, खड्डा भी खोद रखा उसे, मेड़ की तैयारी कर ली उसे और लगभग हमें तैयारी में है बुआई में और कुछ आप और किसान भाई जी की बुआई कर भी चुकी है तो बुआई करने से पहले आपको किसान भाई ने एक कहो कि वो आप रहे जो बीज ले रहे हैं जो बीज और बुआई कर रहे हैं वो बीजों उपचार जरूर करें। अगर वो बाजार से जो प्रमाणित बीज लाए करके भी अगर बुआई कर रहे हैं तो भी वो उपचार जरूर करें कि नहीं तो धूप में होने को रख लीजिए ताकि ओवर में कोई प्रकार ज़्यादा नमी भी जीव हुए तो खत्म हो जाए या कोई कीट पतंग हो गए जिसको कि नुकसान पहुँचाना हो गए तो भी हट जाए। तो ये थोड़ी सी ये बात पर भी ध्यान रखें तो आप किसान भाई वास्ते बढ़िया रह सकें। इसी बात है लाल जी भाई कि आप और जो सरकार है वो हमेशा किसान भाइयों की मदद रह वास्ते हमारी आर्थिक उन्नति रह वास्ते प्रयत्नशील रहेगी और यह बात हमको हमेशा करती है कि कई प्रकार की योजना बनाया करें जिसमें एक है फसल बीमा योजना और फसल बीमा योजना जो है लगभग हाने भी को नहीं 18 फरवरी 2016 में चालू हुई है और आप और प्रधानमंत्री जी योजना चालू करिए ताकि आप और किसान भाइयों में एक प्रकार से की कभी
1: मुआवजा मिलते रहे
0: मुआवजा मिलते रहे फसल बीमा मतलब है कि किसान भाई ये डर सो निकल जाएगा कि हमारी फसल जो खराब हो गई तो हमारा की हो जाए ऐ भाई वो दिल से
1: निकल जाए
0: तो ये उद्देश्य ऐसे है कि प्राकृतिक आपदा हो गए या कीट हो गए या रोग हो गए जिससे कि फसल जो नुकसान हो जाए या फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति रमुआ किसान उन फसल की पूरी पूरी जो मुआवजा है मिल जाते भरपाई हो जाते वित्तीय सहायता मिलते तो किसान भाई निश्चिंत हो जाते और निश्चिंत है भी कि भाई अगर वो फसल हो गई तो सखा दाम मिलना ही है और अगर कोई कारण से खराब भी हो जाए सरकार तो आपको खड़ी है और आप और नुकसान की भरपाई भी हो जाते तो फसल बीमा योजना जो है किसानों के वास्ते एक आपको कह सकती करके वरदान है आप और किसान भाई ये पूर्ण रूप सुरक्षित हो गया है भविष्य न लेकर के कि भाई मौर्य कहीं भी हो जाए तो भी कोई प्रकार जोखम को नहीं रहेगा तो इस प्रकार से और भी कई प्रकार की योजनाओं पर सरकार चलाती रही समय समय मत है और उर्वास लोगों से जुड़ती रही तो आप किसान भाइयों ने भी इसे जोड़ना चाहिए और ये सब योजनाओं रो विशेष रूप से फायदे उठाओ।
1: बिल्कुल सही बात कही कि भी सरकार है जो किसान वास्ते बिल्कुल तत्पर है कि भी और कोई भी समस्या हो तो ऐसा समाधान वास्ते भी तैयार है और ये कारण ही जो पर जो सरकार है वो किसान वास्ते हर प्रकार की योजना निकाल रही है। अब अगर बात करो कि भी जब वो किसान भाई है खेती रे मुआवजा कार्य चालू करे तो वो वास्ते भी उन्होंने तीन की मुआवजा मिले कि जो कह सको कि भाई जी पी एम किसान निधि योजना तो ये मोए 2000 रुपया हर 4 महीने रे मोए मिले मतलब साल में 6000 रुपया मिले और मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत भी उन्होंने 1000 रुपया मिलता रहे। तो यही जगह भाई जी हाँ किसान भाई आप जो है शुरुआत करे बिजाई या खेतौरी या के सुखों के बीज लाउंड करने रही तो वो वास्ते भी सरकार द्वारा किन की वो ना सहायता राशि दी जाए। और बात करो कि भाई यंत्र की बात करो तो यंत्रों में भी सरकार द्वारा किन की वो ना अनुदान दियो जाए तो अगर यंत्र भी खरीदना चाहे तो भी सरकार द्वारा किन की वो ना फायदो दियो जाए। पर केवल मतलब यही है कि भाई अगर किसान भाई आप रे खेती करना चाहे तो पग पग बथे सरकार वास्ते तैयार है और हर चीज़ वास्ते वो ना किन की मतलब चाहे लोन की बात करो चाहे आप अनुदान की बात करो चाहे और कोई भी तरह की सहायता की बात करो तो हर प्रकार वैसे तैयार है।
0: मतलब एक बात आप ऐसा कर रहे हैं कि आप जो आप युवा वर्ग है उनको कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ और वास्ते कृषि एक अच्छो क्षेत्र है वो ये क्या करो युवा वर्ग अगर कृषि क्षेत्र से जुड़ जाए तो पुराना लोगों से अनुभव ले और खुदरा नवाचार करके विज्ञान तकनीकों में अपनाए के अगर काम करे तो आप बढ़ सके।

0: सही बात है। देखो युवा जोश है जो को देश की प्रगति में सबसे बड़ा साधक हुई, वो आप देश न के तो के पुकार सके युवा शक्ति है। तो अगर युवा शक्ति अगर आप और आप देख भी रहे हो कि बहुत सारे युवा है जो को खेती बाड़ी में जुड़िया है और आप नौकरियां छोड़ छोड़ के खेती बाड़ी में आप भाग्य आजमा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वह युवा शक्ति अगर खेती बाड़ी में जुड़ी है तो आप और देश कुछ उन्नति की ओर बढ़ी है। और आप देख रहे हो कि आप जैसलमेर की बात करो, आप तो देखो जैसलमेर में कुछ समय पहले बिल्कुल भी पानी को नहीं होता, ये नहरों भी कौन होती, ये ट्यूबवेल भी कौन होता। जब ये पानी की मात्रा आई, ट्यूबवेल आया, नहर आई, और जब पानी जेत हो से जेत की इनकी उत्पादन भी हो से,
1: सही बात
0: जब ये युवाओं लगी हो कि भाई यहाँ पर ये पानी मात्रा में है तो क्यों ना आप भाग्य खेती और अजमाया जाए। तो देखो खेती जब वो भाग्य आप अजमाया तो देखो अपर ये क्षेत्र में जेत अपन मतलब सिर्फ कैर सौंगरी बैरेज मिलता था, तो आज अपन ये अनार मिल रहा है, कीनू मिल रहा है, और केसो का खजूर मिल रही है, और भी कई प्रकार अपनों बैर मिल रहा है, बैर भी कई प्रजातियां मिल रहा है। तो को आपको सोचने से भी बाहर होता, तो क्या मतलब भाई जे के युवा है, पढ़िया लिखे हुआ है, अच्छी सोच हुआ और आप भाग भी हमारे वो उठाए कि भाई अगर आप खेती बाड़ी करो तो उस अपन निश्चित रूप से अगर बढ़िया तरीके से कार्य करो तो अपन इनमें फायदा भी मिली। और सरकार भी है जो को पग पग मथे हमारी सहायता भी कर रही है, हर जगह वो मदद कर रही है, उन कई भी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सरकार भी इन्वेस्टमेंट में भिड़ो हो रही है। तो क्यों मतलब भाई जैसे भी सरकार है जो हमारी हर जगह सहायता कर रही है, चाहे वो केत भी, चाहे आप बात करो कि केसीसी लोन हुए, चाहे बूंद बूंद सिंचाई हुए, चाहे अपनों घर में तलाई बनावनी हो तो खेत तलाई बनावनी हुए, टोको बनावना हुए, या बड़ो खेत में हुए अपन कोई नया यंत्र लगाना हुए, तो हर प्रकार एक क्षेत्र में थे आप और सरकार भी सहायता करी है। और बस यही है कि युवा शक्ति अगर में बरू लगोड़ी रहे और दूसरों आप और इस क्षेत्र में जो युवा शक्ति है या नवाचार भी करिया है, अपन बात भी करी कि भी आप और की उत्पादन हो रहे हो तो हमें की उत्पादन हो रहे हो, ये सब पढ़े लिखे युवा है और आपके क्षेत्र में इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से खेती ना आप और बहुत बढ़िया एक आयाम मिल से और आप और खेती है जो बहुत ऊँची ऊँचाई में जा से।
1: और एक और बात बताऊं लाल जी भाई, क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें जो कृषि का क्षेत्र है नहीं विषय बन गए, लेकिन एग्रीकल्चर का है। और हाँ कितना ही बच्चा है जो एग्रीकल्चर दे रहे हैं, एक आपको देखता था कि बच्चा है जो डॉक्टर इंजीनियर एआरई पढ़ाई करके विदेशों में जाऊँ नहीं सोचता था। आज आप और देख रहा जो बच्चा है जो नई पीढ़ी आवनाड़ी देश का भविष्य है वो एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं, और एक अच्छा संकेत है आप और वास्ते भविष्य में आते कि आप और देश है जो आगे बढ़ से, और ऐसा सारी जो की के है जो दिख रहे हो नहीं आपको मुझे तो भी ऐसा सारे आप और सरकार रहे प्रयास और परिणाम पर, तो आप और ये ना कारगर बनाने वास्ते आप और खुद में भी आगे
0: होना पड़ सकता
1: आगे भी बात जारी रखो। पहले से मुझे राजस्थानी लोग
0: लोग।

राजू भाई हाने सुनिया आपो है अनाथी बाबू रो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत। हाँ अब बात करा था आपको किसान भाई से कि भाई वो खेतों की तैयारी कर रही है और सरकार भी है हमारी सहायता कर रही है। कुछ आप किसान भाई ने खुद में भी जागरूक होना पड़ते हैं, सचेत होना पड़ते हैं, सजग होना पड़ते हैं। और हमें खैर किसान भाई भी हमें मोबाइल क्रांति आवन तो अपना किसान भाई भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। और जब आप बात करते जैविक खेती रही कि भाई जिसको आप अगर युवा वर्ग इससे जुड़े तो युवा वर्ग में मैं भी जैविक खेती के प्रति उत्साह होना चाहिए। क्योंकि जैविक खेती रासायनिक खेती से बहुत ही कारगर है। और सबसे पहली बात तो यही है कि अपना जो इराज को दम है वो बहुत सखड़ा मिले। हालांकि आप मैं एक डर बैठो जैविक किसान भाई में कि जैविक शू आप जैविक खेती कर सो ऑर्गेनिक खेती कर सो तो आप मुनाफो कम होते उत्पादन कम होते तो ये कारण की वो इगन से बची। लेकिन एडोपी को भय है और अगर आप किसान भाई जैविक खेती करे तो निश्चित रूप से रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती बहुत ही उपयुक्त है। एक तो आप जमीन और स्वास्थ्य में बढ़ो जावी मिट्टी स्वास्थ्य में बढ़ो जावी आगामी आप जमीन है वो और भी और बढ़िया से बढ़िया होती रही उसका पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती जावी और इस साथ में जो फसल होगी वो भी बहुत सही और अब आवश्यक पोषक तत्वों से पूरित होगी ताकि जो वो फसल उपयोग करें यानी आप लोग जो कर सो तो वो भी

प्रकार रोग से मुक्त रहो। इस प्रकार अगर रासायनिक का प्रयोग कर दे तो वो बीमारी रोग घर है, और इस बारे में आपको कई बार चर्चा कर दे तो रासायनिक प्रयोग कम करें, लगभग दवाई रूप से करें, क्योंकि हमें आपको जो जमीन भी है नहीं और आदि हो गई तो एकदम से कम तो आपको कौन कर सकते हैं, तो आप उन्हें धीरे धीरे धीरे करके कम कर सो, और जैविक खेती भी और उन्नत हो गए अग्रसर हो गए तो बहुत ही बढ़िया है। बात तो आप आगे रख सो पहले समझे राजस्थानी लोग की।

0: तो लाजी भाई हाँ सुनी आपको राजस्थानी लोकगीत और ये गीत समापन साथ ही आप कार्यक्रम रहे समापन रो वक्त भी है पूरो तो तेजसी कर जे राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम, हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज की कलाकार थी सीमा मिश्रा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर। सुनते हैं आशा भोसले को।

नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजीब बुलबुल हैं किसी बाग के सयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है, औलाद के भीतर

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

सौ गीत संगीत की ओर हम दोबारा चलेंगे। पहले सुनते हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार है मेहंदी हसरना।

रंजिश लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए पहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

0: ಸಾಸಿವೆ ಗಜಲ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್.
1: ಕುಚ್ಚಿತ್ತು ಕುಚ್ಚಿತ್ತು

0: दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है, लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है, तो उनके शेर है।
1: माना माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का

कि मुहब्बत का छुपाना है मुहब्बत, माना कि मुहब्बत का

जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

जैसे तुम्हें आते हो न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

जैसे तुम आते हैं जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे मेहंदी हसनिया। यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:45 हैं। आइए सुनते हैं समाचार संध्या और उसके बाद 9:00 न्यूज एट 9, जिसे हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी।

0: इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य

0: सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले दो तीन दिनों में गुजरात, कोंकण

0: गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action.
4: On the occasion, both prime ministers jointly

0: to ensure the safety of pilgrims. On to sports. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-host US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तोसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में
2: यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आज नाराज है, माफ नहीं करेंगे।

0: क्या मजाक लगा रखा है? चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूँ। ये मुझे तो फंसा दिया। आखिर आप चलती हैं कि नहीं? पहाड़ उतरना आसान काम नहीं, पाँव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है?
1: मुझे माफ कर दीजिए।
0: माफ किया? चलो
1: ऐसा नहीं, डर से पहले।
0: अच्छा बाबा, माफ किया, अब चलो उठो।

फिर हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी। ओ पछताओगी कुछ ऐसे के ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज की कलाकारा है शोभा हर्ष।

पकड़ मर पूछो पकड़ियो अंगली पकड़ मर पूछो पकड़ियो अंगली पकड़ मर पूछो पकड़ियो अंगली पकड़ मर पूछो पकड़ियो।

चार दिनारो पावन जोबन, चार दिनारो पावन जोबन, चार दिनारो पावन जोबन, चार दिनारो पावन जोबन। मारे तन में आग लगाए कदे तू ना चली, कदे तू ना चली, कदे तू ना चली। मैं प्रीत सुचंग बजाऊं जदे तू ना चली, हरे मन डरी आस पुराऊं जदे तू ना चली।

जो बन झोला खाए रे थारो, जो बन झोला खाए रे थारो, जो बन झोला खाए रे थारो, जो बन झोला खाए रे थारो, मारो मन मत तू भटकाए कदे।

0: कदे तू ना चली, कदे तू ना चली,
1: जदे मैं ना चूली, जदे मैं ना चूली।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं झलकी। कमीना लेखक है हरिवल्लभ बोहरा।

0: अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, घरवाली ने आखिर मान लिया साली के संग ही रहना है।
1: अजी सुनते हो कुमार? सुनो, मैंने कहा सुनते हो ना?
0: जाओ, नहीं सुनता, ये कान बंद।
1: ओहो, पता नहीं कहाँ खोए खोए से रहते हैं, कानों में उंगली डाले खड़े हैं ताकि मेरी आवाज ना सुन सको। अजी सुनते हो?
0: नहीं, सो रहा हूँ।
1: सो रहे हो, क्या मतलब?
0: अरे दिख नहीं रहा, कान साफ कर रहा हूँ।
1: हो लिए कान साफ, अब सुनोगे भी?
0: कुछ कहोगी भी, वरना सुनूं कैसे?
1: आज बड़े खुश नजर आ रहे हो।
0: कौन?
1: तुम।
0: नहीं तो?
1: अच्छा,
0: रहने दो रहने दो, ज्यादा उछल कूद मत करो, इन दिनों पैर फिसल पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
1: अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी।
0: इसके 2 कारण हैं।
1: एक,
0: तुम बीवी हो मेरी।
1: 2,
0: तुम्हारा पैर भारी है इन दिनों।
1: छोड़ो मेरा पैर।
0: पकड़ाई किसने?
1: क्या?
0: तुम्हारा पैर।
1: क्या मतलब?
0: बड़ा शौक है मुझसे अपने पैर पकड़वाने का।
1: वो तो एक दिन पकड़वा कर ही मानूंगी। अरे तुम्हें तो फक्र होना चाहिए अपनी किस्मत पर, जो तुम्हें मुझ जैसी सुशील बीवी मिली है।
0: क्या सुशील बीवी है, जो बात बात पर पति को ताने देती है, उसे जरा भी खुश रखने की कोशिश नहीं करती है।
1: खुश रखने की कोशिश नहीं करती है? कौन सा नाराज कर रखा है मैंने तुमको?
0: कभी राजी भी किया हो तो बताओ।
1: कुमार,
0: अब आज सुबह की बात लो, तुम्हें पता है आज सुबह मैं चिल्लाता ऑफिस क्यों गया था?
1: चिल्लाता ऑफिस? ये कौन सा ऑफिस है?
0: अरे चिल्लाता ऑफिस नहीं, चिल्लाता हुआ ऑफिस गया था।
1: ओह, मैंने सोचा ये किसी ऑफिस का नाम है।
0: फिर भी कहती हो, हमारे खानदान वाले संस्कार सिखाते हैं।
1: मगर इसमें चिल्लाता हुआ ऑफिस जाने की क्या बात थी? मैं तो ऐसी हालत में ज्यादा चल फिर नहीं सकती, उल्टे इन दिनों तुम्हें घरवाली का खास ख्याल रखना चाहिए।
0: हाँ, यही तो मैं तुमसे पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, बुलाओ उसे।
1: उसे? उसे किसे?
0: लो सुन लो, और कहती हो सुशील बीवी हो, देखा?
1: अरे तुम बताओ तो सही।
0: साली।
1: क्या गाली? कुमार तुमने मुझे गाली दी?
0: अरे गाली नहीं भाई, साली।
1: फिर गाली?
0: अरे गाली नहीं सा, छोड़ो वो, अरे वो आधी घरवाली होती है ना, आधी घरवाली।
1: हाँ तो यूं कहो ना बहन।
0: अरे बहन तो है तुम्हारी।
1: अरे बाबा मेरी ही सही, मगर वो।
0: हाँ बताओ, बुलाया क्या उसे?
1: मगर वो।
0: हाँ याद आया, मैं ऑफिस जाने से पहले क्या कह कर गया था?
1: हाँ हाँ वो याद है ना?
0: बताओ क्या कहा था?
1: वो आपने कहा था कि अब तुमसे चला फिर नहीं जाता।
0: अरे मुझसे नहीं, तुमसे।
1: हाँ बाबा वही, तुमने कहा था कामना को बुला लो।
0: हाँ तो बुलाया तुमने?
1: जी वो तो
0: मुझे मालूम था, नहीं बुलाया होगा।
1: मगर
0: तुम अब पहले वाली मीना नहीं रही, तुम्हें अपने पति पर रति भर भी विश्वास नहीं रहा।
1: अरे क्या कह रहे हो कुमार?
0: तुम मुझसे दूर होती जा रही हो मीना।
1: तुम कह क्या रहे हो कुमार?
0: क्या तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहती हो मीनू?
1: कुमार तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
0: हाँ अब मैं तुम्हें पागल भी लगने लगा।
1: अरे सुनो तो, मैंने बुलाया था कामना को।
0: तुमने बुलाया था कामना को?
1: हाँ हाँ।
0: गुड, वेरी गुड, तुम देवी हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारा प्यार अमर है, वाह।
1: मगर सुनो, मैंने कामना को तो सवेरे ही बुला लिया था।
0: वेरी गुड।
1: मगर
0: क्या, कामना चली गई?
1: हाँ।
0: मगर क्यों?
1: वो तुम्हारा दोस्त आया था चेतन।
0: अरे चेतन गया भाड़ में, ये बताओ कामना क्यों चली गई?
1: वही तो बता रही हूँ।
0: हाँ बताओ।
1: तुम्हारा दोस्त चेतन सम जा रहा था।
0: अरे वो सम जा रहा था या खुड़ी, कामना से क्या लेना देना?
1: वो कामना को ले गया।
0: अकेला?
1: नहीं उसकी बीवी साथ थी।
0: तो भी ले गया, बीवी साथ थी तो उसे क्यों ले गया?
1: अरे सुनो तो, वो क्या था कि उनकी कार में जगह थी।
0: अच्छा।
1: अपना घर बीच रास्ते में पड़ता था तो चेतन यहाँ आ गया।
0: उसने कामना को ऑफर किया होगा।
1: हाँ।
0: और तुमने उसे झट से भेज दिया। हाँ। होगा, शर्म नहीं आई?
1: क्यों भला,
0: तुम खुद चली जाती।
1: उसने मुझे ऑफर नहीं किया।
0: ऑफर करता तो क्या तुम भी?
1: हाँ चली जाती।
0: मार न देता। ओपो, अरे पूरा घर, ये सोफा, वो टेप, वो सीढ़ी क्यों न दी उठा के, और भी चीजें दे देती उसे। इस मर्दू चेतन को भी आज ही संभरना था।
1: कितना अच्छा है, अपनी बीवी को लेकर घूमने जाता है। तुम कभी गए हो मुझे लेके?
0: अरे तुझे तो मैं एक दिन बॉर्डर पर छोड़ाऊंगा।
1: कुमार सच्ची मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
0: अब मतलब पहले किसी और से करती थी?
1: कुमार
0: मैं नहीं मानता।
1: क्या?
0: यही कि तुम मुझसे और सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो।
1: मैं तुम्हारे प्यार में जान दे सकती हूँ। दू?
0: ताकि मैं धरा जाऊं अंदर? तुम मर कर भी मुझे चैन कहाँ लेने दोगी? ए भगवान,
1: इसमें भला भगवान क्या करेंगे?
0: तो तुम ही कर दो ना।
1: क्या क्या कर दूं?
0: प्लीज वापस बुला लो ना उसे।
1: उसे? उसे किसे
0: यार? उस कामना की बच्ची को।
1: कामना की बच्ची? कुमार कामना की तो अभी सगाई भी नहीं हुई है, शादी से पहले बच्ची।
0: हे भगवान, तू मुझे कब उठाएगा?
1: कभी नहीं।
0: हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि मैं सड़ सड़ कर मरूं।
1: कुमार, तुम यार एक फैसला नहीं कर सकते?
0: कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कर क्या सकता हूँ? लो, मैंने फैसला कर लिया।
1: क्या?
0: यही कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा।
1: मगर मैं नहीं दूंगी।
0: हाँ, मेरी जान सुखाओगी मगर उसे नहीं बुलाओगी।
1: किसे किसे नहीं बुलाऊंगी?
0: कामना, कामना को, मेरी साली और तुम्हारी बहन को।
1: उसे तो नहीं बुला सकती।
0: क्यों?
1: वो क्या अंदर बैठी है जो उसे बुला लूं? वो तो गई है सम, घर में नहीं है।
0: अरे डोरी है।
1: हाँ है।
0: उसे ले आओ।
1: क्या करोगे?
0: गले में लटका कर झूले खाऊंगा।
1: क्या?
0: हाँ।
1: अरे बाबा, कामना घर में नहीं है, सम गई है, लौट आएगी।
0: दफा हो जाए यहाँ से।
1: दफन हो जाओ, भला किस खुशी में?
0: मेरी मौत की खुशी में।
1: कुमार, मैं जानती हूँ मरना इतना आसान नहीं है।
0: तो
1: ये मिस्टर कुमार चंद्रचूड़ कि तुमने आज तक कोई मुश्किल वाला काम किया भी है?
0: हाँ, किया है ना।
1: क्या?
0: तुमसे शादी।
1: ओ माँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
0: मैं बताऊँ? जा, चली जा अभी और इसी दम चली जा।
1: कुमार, मैं सच्ची में चली जाऊंगी।
0: हाँ हाँ, जा जा जा, चली जा, मेरी माँ दफा हो जा।
1: माँ नहीं कुमार, होने वाले बच्चे की माँ। अपने पिया का ऑर्डर मान के लो मैं चली।
0: जा, सुन, और दरवाजा जोर से बंद कर दी जाना, आवाज पड़ोसियों तक को भी सुनाई देनी चाहिए। मूड खराब करके रख दिया साली ने। नहीं नहीं, घर बंद। अच्छा हुआ पीछा छूटा। कौन है? अरे कौन है? अरे सुनता नहीं है वे, कौन है? अरे जा मर, मैं घर पर नहीं हूं। अरे कहा ना मैं घर पर नहीं हूं, सिर खा गया ससुरा।
2: अरे जनाब, आवाज तो आपकी ही आ रही है।
0: तो दरवाजा खोलकर अंदर क्यों नहीं आते?
2: लो आ गए, तुमने बुलाया और हम चले आए।
0: मैंने मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे आप?
2: हाँ मैं, तुम्हारा ससुर कस्तूर चंद मुल्तान चंद जरी वाला, खरी खरी कहने वाला।
0: क्या है, आप क्यों आए हैं?
2: क्या बात है जमाई राजा, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो, फिर भी सुंदर लग रहे हो।
0: ए
2: क्या क्या है ये, क्या कर रहे हो?
0: क्यों, मैं क्या कोई हसीना हूं जो रूठ जाती है तो सुंदर लगती है?
2: मगर तुम,
0: आप सखिया तो नहीं गए?
2: मगर मालूम तो चले तुम सिरे से ही उखड़े हुए क्यों?
0: क्यों, आपका कोई राज है या फिर सरकार का नियम है कि कोई आदमी उखड़ा उखड़ा नहीं रह सकता?
2: नहीं नहीं, नियम तो नहीं है।
0: तब मेरी मर्जी, मेरे बाप की, मेरे बाप की, उसके बाप की मर्जी।
2: किस बात की?
0: उखड़ने की।
2: तो उखड़ो ना, जम के उखड़ो, मैंने कब मना किया है?
0: आप कर भी नहीं सकते।
2: क्या?
0: कुछ भी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 60 साल के बुढ़े, अब तुझसे क्या होगा?
2: मिस्टर कुमार, क्या नहीं कर सकता मैं?
0: मना
2: मनाऊंगा तो तब ना, जब लूटने का कारण जानूंगा।
0: अरे बाबा, वो मना नहीं, वो मना, वो नो वाला नहीं।
2: किस बात की नहीं?
0: मैं उखड़ूंगा, लाख बार उखड़ूंगा, कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता।
2: लो, तुम कहते हो तो नहीं करेंगे?
0: हाँ, अपने घर पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ।
2: मगर पता तो चले।
0: किसका? मेरी मिल्कियत का?
2: अच्छा नहीं, तो तुम्हारे सीरियस मूड का।
0: दिखता नहीं क्या?
2: दिखता तो है मगर।
0: हाँ, इस उम्र में कम दिखता है।
2: नहीं यार, मुझे क्या मालूम तुम सीरियस क्यों हो, तुम्हारा मूड किस बात पर खराब है। ये बात तुम्हारे मुंह पर लिखी हो तो मुझे दिखे।
0: तो क्या आपसे हर बात मेरे मुंह पर लिखी जाए?
2: नहीं, पर कारण तो तुम ही बताओगे ना।
0: किसका?
2: तुम्हारी सीरियसनेस का।
0: यार किस गधे ने कहा है कि मैं सीरियस हूँ? मेरे बाप?
2: नहीं, बीबी के बाप।
0: हाँ हाँ, वही ससुर जी, किस चिड़ी मार ने आपसे कह दिया कि मैं सीरियस हूँ? मैं कोई सीरियस वीरियस नहीं हूँ, भला चंगा चुस्त दुरुस्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
2: अरे वो सीरियस नहीं, वो सीरियस माने मुंह उतारना।
0: तब ठीक है।
2: कुमार, आज तुम्हारा मुंह किस बात पे उतरा हुआ है?
0: हैं?
2: अब ये मत कह देना कि मुंह कहाँ उतरा है, वो तो अपनी जगह पर सही सलामत है। ये बताओ तुम अपसेट क्यों हो?
0: एक बात पूछ सकता हूँ पूज्य ससुर जी?
2: हाँ हाँ पूछो, बेझिझक होके पूछो।
0: क्या मैं हमेशा दांत फाड़े हुए रहूं?
2: बड़े अजीब आदमी हो यार।
0: यार नहीं ससुर जी, कुमार, मिस्टर कुमार चंद्रचूड। और मैं अजीब कैसे हूं? ये क्या है, दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, ये कान, ये नाक, ये रहा मेरा मुंह। अरे सारे अंग अपनी अपनी जगह पर सही सलामत हैं कि नहीं?
2: लानत है।
0: वो तो ठीक है, मगर ये बताओ मैं अजीब कैसे हुआ?
2: तुमसे तो यार कुमार बात तब बेकार है।
0: तो आए क्यों है? है? अंदर कैसे आए?
2: अपने पैरों पर चल के आए हूं।
0: अरे पैरों पर चलकर तो आए, मगर आए क्यों है?
2: आज नाइट ड्यूटी है।
0: यहाँ मेरे घर पर?
2: यहाँ नहीं।
0: तो
2: कुमार
0: तो कहाँ है?
2: ये असेंबली कंट्रोल रूम में लगी।
0: तो ऑफिस जाइए ना।
2: वहीं तो जा रहा था, वो क्या है कि मुझे रात वहीं रुकना पड़ेगा।
0: तो मैं क्या करूं, चल के तुम्हारे साथ सोऊं?
2: मैं छी छी छी छी।
0: तो जागता रहूं?
2: नहीं, पत्नी घर पर अकेली हो।
0: तो क्या मैं उनके साथ? ना बाबा ना।
2: तुम नहीं मिस्टर कुमार, वो कामना बिटिया है ना?
0: नहीं है।
2: नहीं है?
0: अरे कहां ना, यहां नहीं है।
2: अरे मजाक मत करो कुमार, देखो देखो अंदर जाकर के देखो। मीना, ओ मीना।
0: अरे कहां ना, नहीं है मीना।
2: कोई बात नहीं, मीना को तुमने बाहर भेजा होगा, मुझे तो काम ना।
0: अरे मेरे बाप, नहीं है नहीं है, मेरी बीबी के बाप। अब मैं कह रहा हूँ नहीं है, नहीं है यहाँ। अब फिर भी बोले जा रहे हो?
2: तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं भेजने तो मत भेजो।
0: नहीं भेजने की बात नहीं है, वो घर में है ही नहीं, उसे कैसे भेजूं?
2: नहीं, वास्तव में नहीं है क्या?
0: अरे भी वास्तव में नहीं है, मेरे और मेरे बीबी के बाप, तोबा।
2: ठीक है मिस्टर कुमार, मैं जाऊं, उससे पहले एक बार देख लेते।
0: अरे कह रहा हूं नहीं है ससुरे, हट। क्या आदमी हो तुम भी, परेशान पे परेशान किए जा रहे हो।
2: तरस क्यों रहे हो, भेज देता हूँ।
0: किसे?
2: तुम्हारी सास को, तुम उसे देखने को तरस रहे हो ना।
0: अरे मेरे भगवान, मैं आज जरूर पागल हो जाऊंगा। कितना अच्छा मूड था, साली मिलेगी, यहाँ रहेगी, बच जाएगी, हंसेगी तो फंसेगी, फिर कुछ बात आगे बढ़ेगी, मगर इन नाम मुरादों ने देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
3: कैसे हो बेटा?
0: लो हाजिर है शैतान की नानी।
3: नानी? अभी कहा बेटा, कुछ मास बाद बनूंगी नानी।
0: लो कर लो बात।
3: एक नन्हे छे मुन्ने छे प्याले छे खूबसूरत छे नाते की नानी बनूंगी मैं।
0: लो नानी, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू।
3: मैंने पूछा कैसे हो बेटा?
0: क्यों कैसा दिखता हूँ आपको?
3: दिखते तो ठीक ही हो बेटा।
0: मैं कह देता हूँ, मैं आज बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ, समझी? आज मेरा
3: पूरणमासी का व्रत है बेटा।
0: ओहो मेरी माँ,
3: तेरी कहाँ से हूँ, मैं तो तेरी बीवी की माँ हूँ बेटा, तेरी तो सास हूँ।
0: काश अभी इसी वक्त मेरा दम घुट जाता, मैं क्या करूँ?
3: चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना।
0: इसी की तो चिंता है।
3: चिंता चिता समान हुआ है बेटा।
0: अरे आप छोड़िए मेरी चिता से जाना, ये बताइए आप इस समय यहाँ कैसे? आपके उनकी तो नाइट ड्यूटी थी ना?
3: हाँ वो तो है बेटा, ड्यूटी जो ठहरी, ड्यूटी तो भाई ड्यूटी होती है। तुम ही बताओ बेटा, ड्यूटी पर तो सबको जाना पड़ता है, क्या करें, ड्यूटी जो ठहरी, अब चाहे डे हो चाहे नाइट।
0: राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट फरमाती आप।
3: बेटा
0: कहो सासू माँ।
3: मीना कहाँ है?
0: गटर में है।
3: गटर में?
0: अरे यही कहीं होगी
3: बेटा। तो क्या ये घर गटर है?
0: अरे छोड़ो मेरे घर को, अपने मतलब की बात बोलो।
3: ओहो
0: क्या हुआ?
3: मेरी बेटी कामना।
0: क्या हुआ उसे? जिंदी है, सही सलामत चक्का।

0: दूंगी अपनी बेटी।
1: तो कैसे देंगी, मुझे क्या करना होगा?
0: बेटे फिलहाल तो उसे लौटाना होगा।
1: अरे दुर्द पड़िया, मैं पहले ही उस खुसट को कह चुका हूँ कि नहीं है कामना।
0: नहीं, उन्हें लगा शायद तुम उन्हें मना कर रहे हो सकता है तुम मुझे हाँ कर दो बेटे।
1: क्यों?
0: क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी, जन्म दिया है मैंने उसको।
1: तो
0: जितनी खूबसूरत है वो उससे कम नहीं हूँ मैं, वो तो सैंपल है बेटे, असल चीज तो मैं हूँ। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त।
1: यह आप अपने आदमी से पूछिए।
0: क्यों बेटे, तुम नहीं हो?
1: आदमी तो हूँ मगर
0: आप दुश्मन हो। नहीं ना, सिंपल, जब दुश्मन नहीं हो तो मेरे ही आदमी हुए ना बेटे। वैसे ये बात तुम्हारी छोटी बुद्धि में नहीं आएगी, इसलिए छोड़ दो।
1: मैंने किसको पकड़ रखा है जो छोड़ दूं?
0: कामना बिटिया को छोड़ दो।
1: कहा ना नहीं है कामना।
0: बेटे तुमको मालूम नहीं होगा, मीना को बुलाओ, वो जानती होगी।
1: अरे उसी का तो किया धरा है ये सब, जड़ तो वही है।
0: कैसे?
1: कैसे क्या, मीना से पहले मैंने कामना को क्यों नहीं देखा?
0: बेटे तुम उसे देख भी नहीं सकते थे।
1: क्यों?
0: जिस दिन तुम मीना को देखने आने वाले थे, हमने कामना को उसके ननियाल भेज दिया था।
1: क्यों?
0: बेटे हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे।
1: अच्छा अब समझा, बी क्लास का माल मेरे मत्थे और हाई ग्रेड का माल किसी और के लिए।
0: अब कुछ नहीं हो सकता बेटे।
1: ऐसा मत कहिए सासू माँ।
0: ओके ओके ओके, चलो नहीं कहती।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सासू माँ, आई लाइक यू।
0: हट बेटा, इस उम्र में तुम्हारी माँ को कोई ये बात बोले तो।
1: हट, मुंह न तोड़ दूं उसका।
0: ठीक है लाओ, तुम्हारा मुंह लाओ, मैं तोड़ देती हूँ बेटे।
1: आप जाने का क्या लेंगी?
0: बेटा कामना देखो ना, यही कहीं होगी।
1: अरे यहाँ वहाँ कहीं नहीं है वो।
0: बेटे तुम मेरे जमाई होने के नाते नहीं लौटा सकते उसे।
1: अरे काहे का जमाई, देखिए मुझे मालूम है जमाई होने के नाते मुझे आपके काम आना चाहिए, मगर जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसे मैं कहाँ से पैदा करूँ?
0: बेटे मैं तो सास के रिश्ते से कह रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी, एक बार देख लेते तो।
1: अरे मैंने कहा ना सासू जी, वो कहीं नहीं है, मैंने सब जगह देख ली है, कोटी मटकी बाल्टी मग गिलास, यहाँ तक की खाली शीशियों तक को उलट पुलट कर देख चुका हूँ, वो कहीं भी नहीं है।
0: बेटे मैं किसी तितली की बात तो कर नहीं रही हूँ, अपनी बेटी स्वीट डॉटर कामना के बारे में ही पूछ रही हूँ।
1: जी हाँ, मैं भी आपकी उसी स्वीट डॉटर की ही बात कर रहा हूँ, किसी नागिन की नहीं।
0: बेटे बेडरूम देखा?
1: हाँ हाँ, बेडरूम बाथरूम ड्राइंग रूम किचन यहाँ तक की कबाड़ खाना तक देख चुका हूँ, आप अगर कहें तो पिछवाड़े का गटर खोद दूँ।
0: बेटे तुम्हारा स्टैंडर्ड भी यही है
1: क्या?
0: बेटे पहले जमाने में लोग पहाड़ खोद कर नहरें निकालने की बातें करते थे, मगर अब तुम जैसी घटिया लोग गटरों की बातें करते।
1: नहीं करूंगा, मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना काम ना यहाँ नहीं है, अब आप यहाँ से पधारिए।
0: बेटे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, वैसे एक बार अच्छी तरह तलाश कर लेते तो।
1: तुम जाती होगी मैं भगवान आज मैं सचमुच मर जाऊंगा। ओ पिताजी।
2: कुमार।
1: कौन कौन है?
2: मैं तेरा बाप हूँ बेटे।
1: बाप? मगर उन्हें तो।
2: हाँ बेटे, मुझे गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं।
1: तो आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: डर मत बेटा कुमार, इधर देख, इधर बेटे अपने बाप की तस्वीर की ओर देख।
1: पिताजी आप यहाँ से?
2: हाँ अब यही मेरी जगह है बेटे।
1: पिताजी ये सब क्या हो रहा है?
2: ये अंदर की बात है बेटे।
1: पिताजी मैं क्या करूं?
2: कुमार बेटे मैंने तुझसे कहा था ना कि ज्यादा इधर उधर ताक झांक मत करना, जिसमें औरत के मामले में तू बिल्कुल नहीं।
1: वो क्यों पिताजी?
2: बेटे हर आदमी को दूसरे की औरत और कमारी लड़की अपनी बीवी से ज्यादा हसीन ज्यादा जवान नजर आती है।
1: पिताजी भाई दी भी आपको ये सब कैसे मालूम है?
2: क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ कुमार, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कामना तो पूरी नहीं होगी, हाँ हीन भावना जरूर आएगी।
1: भावना?
2: हाँ जैसे अब तुम्हें हीन भावना आ गई है बेटे।
1: कौन सी पिताजी?
2: कामना बेटे।
1: पिताजी मरकर भी आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं समझ गया, कोई नहीं है मेरा, सबके सब साले साला सास

0: अरे ये जबरा क्या कर रहा है अंदर? जबरा यो जबरा, अभी जबरे यहाँ?
1: आया साहब, सलाम साहब।
0: अरे तेरे सलाम की तो, क्या कर रहा था अब तक?
1: साहब साहब म्यूजिक सुन रहा था।
0: म्यूजिक?
1: हाँ साहब, पॉप म्यूजिक।
0: साले नौकर, तू आराम से बैठकर म्यूजिक सुनेगा?
1: साहब मैंने सोचा आप भी पॉप म्यूजिक का आनंद गा कर ले रहे हैं।
0: अबे तेरी तो, तू घर का काम काज छोड़कर टीवी देख रहा था?
1: साहब साहब बड़ा दासू प्रोग्राम आ रहा था।
0: अरे प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम बोल, प्रोग्राम।
1: साहब एकदम फर्स्ट क्लास थी, क्या तो गाती थी साहब।
0: अच्छा कौन थी?
1: साहब सब वो अपनी, वो ही अपनी।
0: कौन कौन अपनी?
1: साहब साहब बड़ा मजा आ रहा था।
0: अबे ओ भूतनी के, कौन थी वो?
1: वही साहब, वही अपनी। वो क्या नाम है उनका साहब? कामना मैम साहब।
0: अबे ठहर तो, बताता हूँ तुझे।
1: बचाओ, बचाओ।
0: ये ले।
1: अरे मार डाला।
0: ये ले।
1: मर गए अरे।
0: अबे तेरी तो, आज से किसी ने भी मेरे आगे कामना का नाम लिया तो देख लेना, ठीक नहीं रहेगा।
1: क्या क्या साहब क्या बोले?
0: और सुन, अगर आज के बाद किसी ने मेरे आगे कामना का नाम लिया भी तो ठीक नहीं रहेगा, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा।
1: फिर भी साहब कोई नाम माना तो
0: मैं उसे इस दुनिया से ही उठा दूंगा। तू तो ये ले, चल।
2: अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो कुमार?
0: सही कह रहा हूँ मैं, मुझे कामना के नाम से नफरत हो गई है। जहाँ कहीं भी मुझे कामना दिखेगी मैं मुंह फेर लूंगा, वो घर वो गली यहाँ तक कि उस शहर को भी छोड़ दूंगा। और सुन लो, आज के बाद इस घर में कामना तो क्या, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। चुप कर मर्दुए, तू तो ये ले।
2: कुमार ये क्या कह रहे थे तुम?
0: हाँ हाँ, ये मैं कह रहा था और कहता रहूंगा, नो कामना नो कामना नो कामना।
2: पापा मम्मी कामना सभी जल्दी यहाँ आओ।
0: क्या हो गया है? हुआ क्या है? मैं पूछता हूँ क्या हुआ है?
3: क्या हुआ मीना?
2: अपनी तरकीब कामयाब हो गई।
3: वेरी गुड।
0: तरकीब? कौन सी तरकीब?
2: जब आपने आज सुबह मुझे कामना को बुलाने के लिए बार बार कहा और डांटा तो मैंने कसम खाई कि मैं आपके मन में कामना के लिए नफरत भर के दम लूंगी।
0: क्या
1: साहब जी मैम साहब की तरकीब काम कर गई शांति?
0: अबे जबरे, तू भी इनके साथ? तू तो ये ले।
1: साहब जी मुझ गरीब पर।
2: अब इसे छोड़ो भी कुमार।
0: छोड़ दूं? तुम सब मिलकर कारस्तानी करो मेरे साथ, तुम्हारी ये वजह मेरे यानी कुमार चंद्रचूड़ के साथ मजा, मैं नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, अब तो मर कर भी नहीं छोड़ूंगा। कामना
2: कामना
0: ओह यस, कम ऑन कामना डार्लिंग, कम ऑन मिस, गिव मी अ किस।
3: ओह नो नो नो,
0: यस यस यस कामना।

अभी आप सुन रहे थे जल की कामना, लेखक थे हरि वल्लभ बोहरा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएमएंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात।

कब तक रहेगी अधूरी, चास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा भवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, कह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्र

चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे।

0: जिंदगी बाकी है उठान है उम्र भी जवान लागे पतली कमर बड़ी बली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे
1: चली बादलों पे कार होके गोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली।

0: तेज है कटार दे की काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे
1: चली बादलों के बाद हफ्ते दूर पे सवार सारी दुनिया ने देखे जली रे।

उस पर ये नजाकत का कही का कही चांदी का बदन सोने की नजर उस पर ये नजर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की

0: जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless."
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility, requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल दिन में 11:55 पर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।